सबक चलो हमसे बढ़ कर हमसे बढ़ कर सेवा हो सेवा गणपति देवा तुमसे बढ़ कर कौन स्वामी तुमसे

तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। इस गुरबाणी की तुक दे गुरु जी उस परम पिता परमात्मा जी अगे अरदास करते हैं कि हे मेरे मालक, तेरे तो बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किसी होर नू नहीं जानता। मेरी तो बस यो बेनती है कि मैं सदा हमेशा तेरे ही गुण गाँव रहा।

तो मैं आया सरनी आया, परोसा आया कृपा आया, जो पावे तो राख स्वामी मार्ग गहर बैठाया। इस गुरबाणी की तुक जिहड़ी आ सानूं इह कहिंदी है कि हे मालक वी असीं सारे ही तेरी सरन विच आ गए हाँ और तेरी ही कृपा सदके साढ़े अंदर भरोसा बजा है। इस करके हे परम पिता जो थानू चंगा लगता है उही साडे लई बख्शो, सानू उही चीज़ां नियामता बख्शो, क्योंकि गुरु दे कारण ही असी थोड़े नाल जुड़ सके हाँ।

102.7 FM रेनबो, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते और नाल दी नाल न्यू जोन AIR ऐप ते तुसी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा आनंद माण रहे हो अपने दोस्त ललित सोनी दे नाल। और स्टूडियो कड़ी ते समा 7:36 और 5 सैकेंड हो रहे ने जनाब। ते हुण गल करदे हां स्पोर्ट्स जगत दी दुनिया दी, और खेड जगत दी गल करिए तां हर कोई खिडारी अपने आप दे विच बाकमाल हुंदा है। हर कोई खिडारी चाहुंदा है कि वह अपने प्रदर्शन दे नाल जड़ा है वह बेहतरीन खेड दिखाए और अपने देश नूं जड़ाया उच्चे मुकाम ते लैके जाए, अपने देश का नाम रोशन करे। सो अजिही ही एक जिहड़ी है नवी इबारत लिखी है भारतीय चैस दे युवा सितारे आर प्रागन नंदा ने। उन्होंने वो कर विखाया जो कि शायद इस चीज़ की कल्पना किसी ने ना की होवे, क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित जिहड़ी आ नॉर्वे चैस टूर्नामेंट जित के सिर्फ इतिहास के पन्नों के उपर ही अपना नाम दर्ज नहीं किया, बल्कि वह इदा के करन वाले जिहड़ा आ पहले भारती बन गए ने। सो 20 साल आर प्रागन नंदा ने जिहड़ा आ नॉर्वे चैस टूर्नामेंट जिहड़ा आ वह जित लिया, और इदा करन वाले वह पहले भारत के खिडारी बन चुके हैं।

और इस जित की सब तो बड़ी खास गल ये रही कि उन्होंने दुनिया के सर्वकालिक महान खिडारियों विच शुमार दो वार दे डिफेंडिंग चैंपियन मैगन्स कार्लसन नू उन्हां दे घरेलू टूर्नामेंट दे विच हराया और उन्होंने एक ही क्लासिकल टूर्नामेंट दे विच उन्हां नू दो वारी हरा के जिहड़ा एक कारनामा कर दिखाया। सो 20 साल दे प्रागन नंदा दी इह उपलब्धि किन्नी वड्डी है इहदा अंदाजा इस गल तो ही लगाया जा सकदा है कि 2008 दे तों बाद किसी खिडारी ने जड़ाया कॉल्सन नू एक ही क्लासिकल चैस टूर्नामेंट दे विच दो बार हराया नहीं सी। सो ये उन्हां दी बहुत वड्डी उपलब्धि है। 2007 दे विच मारेलिया लिनारेस टूर्नामेंट दे विच विश्वनाथन आनंद ने आनंद तो बाद जड़ाया प्रागी ऐसे पहले भारतीय बन गए ने जिन्हां ने कोई अजिहा करन वाला जिहड़ा कारनामा जितया है और क्योंकि उन्होंने क्लासिकल टूर्नामेंट जिहड़ा जितया है जो खुद नंबर वन कार्लसन जिहड़े ने खेल रहे सन। सो दोस्तों ये कहानी जिहड़ी है ये सिर्फ ते सिर्फ एक जित दी कहानी नहीं है। सो ये उस देश दी कहानी है जिहड़ी जिस देश ने पूरी दुनिया नूं दिखा दिता होए कि शतरंज दे बिसात दे उपर भारत जिहड़े ने लगातार अपने झंडे गढ़ रहा है। सो विश्वनाथन आनंद तो लेके आर प्रागन नंदा तक जिहड़े ये खूबसूरत वधिया शतरंज खिडारी हुए हैं इन्हां दीआं प्रतिभावां अगे और इन्हां दे खेड दे अगे सब सलाम करदे ने। पर उत्थे ही प्रागन नंदा ने अपने बारे दे विच दस्सिया कि उन्हां दी इस करियर दी सब तो वड्डी जित है। हालांकि इतने बहुत वड्डे वड्डे खिडारी इस मैच दे विच मौजूद सन बहुत वड्डे वड्डे लोग जिहड़े ने ओ इस खेड नू देखण आउंदे ने पर लगातार चार मैच जितना किंदे भी निश्चित रूप दे विच मेरे करियर दे लई सब तो ज़्यादा अहम पल रहा। सो कहिंदे ने कि जेकर तुहाडे अंदर कुछ कर गुजरन दा जज्बा होवे तां तुहाडे अंदर जनून होवे और तुहाडे अंदर विश्वास होवे अपने आप ते ते बस फिर तां दुनिया वेखदी रह जांदी है और दुनिया तुहाडे इस काम नूं तुहाडे टैलेंट नूं सलामा करदी है।

102.7 FM रेनबो 103.6 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दा आनंद माण रहे अपने दोस्त ललित दे नाल। और स्टूडियो कड़ी ते समय इस वक्त 7:44 और 31 सैकेंड हो रहे हैं। तो गलबात चल रही सी स्पोर्ट्स जगत की दुनिया के बारे, तो स्पोर्ट्स जगत गल करिए क्रिकेट की गल करांगे। तो भारत वालों आयरलैंड ते इंग्लैंड दौरे के लिए T20 टीमों का जड़ाया वो घोषणा कर दी गई है और बहुत सारे नवे खिडारियों को जड़ाया इस मौका दिता जा रहा है। गल करिए T20 क्रिकेट के नवे युग की जी शुरुआत हो जा रही है। तो हूँ जरा श्रेष अय्यर सूर्य कुमार यादव की जगह पर एक नवा कप्तान बनाया गया है और वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्य कुमार जरा उन्होंने परफॉर्मेंस जी ठीक नहीं चल रही सी, जिस करके जरा उन्होंने जरा कैप्टनशिप लैके जरा श्रेष अय्यर दी गई है। भारतीय टीम दो T20 मैच जी आयरलैंड की टीम के नाल खेडेगी और इस तो बाद जरा एक तो लैके 11 जुलाई के इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज जी खेडी जाएगी। सो इस दौरे के लिए जी टीम कोशिश कर दी गई है और इस दौरे की सब तो वड्डी खासियत यह है कि इस दे 15 साल का युवा नौजवान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पहली बार शामिल किया गया है। जी हाँ, IPL दे विच अपने बेहतरीन प्रदर्शन करके जड़ा है इस सब तो युवा खिडारी ने जड़ा हर एक का ध्यान अपने वाल जड़ा खिंचा सी ते हुण इस खिडारी नू मौका मिलन जा रहा है T20 इंटरनेशनल मैच खेडण दा। सो सूर्यवंशी देश दे क्रिकेट इतिहास दे विच सब तो युवा खिडारी बन गए ने जिन्हां ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जड़ा तोड़ दिता है।

मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 तो प्राप्त की जा सकती है।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

नमस्कार, सवेर दे 9 बज चुके ने। एफएम रेनबो ते वेला हो गया है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दा। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतरराष्ट्रीय सरहदां ते माली लैण देण इमारतां दी उसारी अते जायदादां दी खरीद अते विक्री ते सख्त निगरानी रखण लई कहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नीट यूजी 2026 दी मुड़ प्रीख्या दे प्रश्न पत्र दे लीक होण दे कथित दावियां दा खंडन कीता। अफवाहां फैलाउण वालियां खिलाफ सख्त कार्रवाई दी चेतावनी। चोण कमिशन पंजाब वालों अज सवेरे 10 बजे तो शाम 5 बजे तक सूबे भर के सारे 24,453 वोट केंद्रां ते वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR लई विशेष कैंप लाए जा रहे हैं। भारत ने नेपाल नूं 72 सेहत सहूलतां अते 12 सभ्याचारक विरासत प्रोजैक्ट सौंपे। घरेलू LPG रसोई गैस की कीमत च प्रति सिलेंडर 29 रुपये का वाधा। अंतरराष्ट्रीय हवाई आवाजाई संघ ने कहा है कि साल 2044 तक एशिया प्रशांत खेत्र विच हवाई आवाजाई च तेजी लियाउण च भारत अहम भूमिका निभाएगा। मौसम विभाग वालों अज तो पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ च मुड़ लू चलन की पेशिनगोई। फुटबाल च भारत ने बंगलादेश नूं 3-1 नाल हरा के रिकॉर्ड 6वीं वार औरतां दी सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। भारत ने जापान नूं 4-1 नाल हरा के 3जी वार मर्दां दे अंडर 18 एशिया कप हाकी का खिताब जितया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम नूं एशिया कप जितण ते वधाई दित्ती है। इस सन हुण तक दियां FM न्यूज़ हेडलाइंस।

0: यार राहुल, मैं काफी दिन तो तेनू देख रहा है, तू काफी बुझा बुझा जा, उदास उदास जा लगदा है, की हो गया?
1: की दसा यार, काम दा प्रेशर इन्ना है ना, मैनू लगदा ना मेरी जिंदगी बोझल हो चुकी है। हुण तू ही दस, मैं इदां दा की करां कि जिंदगी च बुल्ले लुट सकां ते सुकून नाल रवां।
0: लै मित्रा, घबराउण वाली नहीं कोई गल, अपने कोल इहदा वी हल।
1: की
0: जे तू चाहुंदा है तेरी रूह नूं मिले सुकून, ते कर मित्रा FM रेनबो न्यू ट्यून।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी

सो रंग खुशियां दे, रंग रेनबो दे, और रंग आज संडे मॉर्निंग दे स्वीट दे है ना जी, और रंग जी नाश्ते च थाली मिली है ना थानू, ब्रेकफास्ट वाली थाली उहदे विच जिहड़े परोसे गए ने, आए हाय हाय इन्ने कलरफुल पकवान, दिल कर रहा ना कि फटाफट जाके जिहड़ा नाश्ता मिल गया उहनू खत्म कर दिए है ना। और देखो इन्हां रंग बिरंगी दुनिया नाल ही तां अपनी दुनिया बनदी है, और रेनबो की दुनिया में तां किन्नी रंग बिरंगी है ना, क्योंकि इत्थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स तुसीं सुणदे हो, इंजॉय करदे हो, और मैनूं पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स तुहाडे फेवरेट नहीं, और उस टाइम तां ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਊਨ ਇਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੀਤ ਬਹਾਰ, ਔਰ ਗੀਤ ਬਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

एंड करिए बहुत सारे प्लान होंगे ने। चलो फिर ना प्लान से जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दो, इस तो पहले कि जी हॉली हॉली हॉलीडेज से सानू बाय बाय कह के वापस काम से जाना पै जाए। सो एंजॉय कर दें जी फिलहाल अगला गीत, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार दिल से दिल तक।

0: प्रोग्राम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। तेज धूप, बढ़ता तापमान, लू, डिहाइड्रेशन, थकान और पाचन संबंधी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती हैं। ऐसे समय में हमारे पारंपरिक ज्ञान और भारतीय जीवन शैली की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने भारत के पारंपरिक पेय पदार्थ और स्थानीय खाद्य पदार्थों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से हमारे घरों में बनने वाले पेय पदार्थ जैसे आम पन्ना, सत्तू, बेल का शरबत, छाछ, जौ का पेय और नींबू पानी न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि गर्मी से राहत देने और स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ तीन विशिष्ट विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपका।
2: नमस्ते, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: हमारे साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, आप एक जानी मानी आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। स्वागत, नमस्कार रीना जी, आपका भी
3: नमस्कार। सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
1: और हमारी तीसरी विशेषज्ञ हैं मोनी दीपा तालुकदार, आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं और बहुत सालों से पोषण और इससे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं। आपका भी स्वागत, नमस्कार।
4: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: अपनी चर्चा शुरू करने से पहले क्यों ना हम सुन लें कि गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री ने 31 मई के मन की बात के कार्यक्रम में क्या कहा।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है।

0: लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर अनुपम प्रकाश की, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौसम में हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं वो समय समय पर गाइडलाइंस इशू करते हैं, उन्हें भी हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये बताइए, ये गाइडलाइंस क्या हैं जिन्हें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए?
2: बहुत सही कह रहे हैं आप, गर्मी हो या सर्दी हो या कोई भी मौसम हो, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस समय जब गर्मी अत्यधिक है, जिसको चरम सीमा पे आप कहिए, इस समय गर्मी देश के विभिन्न भागों में है और जैसा कि आगे आने वाला है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और पानी जो है बरसात भी कम होगी, तो हर विभाग जो है देश का उसमें दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा भी होगा एक डिजास्टर अलर्ट जो है वो मोबाइल पे भी किया गया चेक।
1: हाँ।
2: तो ये भी एक उस तरीके से है, और अभी 3-4 दिन पहले भी वो अलर्ट आया था जब गर्मी चरम सीमा पे थी। तो ये हर विभाग जो है सरकार का इसको हर साल ही कुछ ना कुछ करते हैं, ये नई नई चीजें जो है ईजाद की जा रही है जिससे कि लोग इसमें ध्यान रखें। स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं, और हर सरकारी अस्पताल में लू की चपेट में आने वाले लोगों के लिए या जो गर्मी से त्रासदी होती है उसमें कोई भी जो व्यक्ति अस्पताल में आता है तो उसका हम लोग यूजुअली रिपोर्ट भी करते हैं और उनको हम लोग देखते भी हैं कि कैसे इलाज करना है। तो ये सारे स्वास्थ्य विभागों में, सारे अस्पतालों में, डिस्पेंसरी में गर्मी से जिन जिन लोगों को दिक्कतें होने की संभावना होती है या दिक्कतें होती हैं उनके लिए कैसे उनका हमें मैनेज करना है, कैसे उनका उपचार करना है, ये सब दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं और सबके लिए लागू है।
1: जी, ये तो आपने बताया कि जो आपके हॉस्पिटल्स में किस तरह से तैयारी की जानी चाहिए वो तैयारी हुई है गाइडलाइंस के तहत, लेकिन जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं वो कैसे इस चीज को समझें कि कुछ पीक आवर्स होते हैं जिसमें ध्यान रखना चाहिए बाहर ना निकलें, या अगर लू लग जाए तो किस तरह से उसको सीरियसली लें, कब वो डॉक्टर के पास जाएं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है।
2: हाँ, तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शालिनी जी, ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर राज्य में भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी क्या क्या कैसे सावधानी बरतनी है और क्या क्या सावधानी बरतें ये भी काफी जारी किया हुआ है। और इसमें जैसा आपने कहा तो मैं श्रोताओं के लिए ये बताना चाहूँगा कि दोपहर में, भरी दोपहरी में नहीं जाएं, तो 12 बजे से 3 बजे तक या 4 बजे तक जब धूप बिल्कुल चरम सीमा पे होती है, सूर्य हमारे सर पे होता है, उस समय गर्मी से में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कुछ अत्यधिक काम है, बहुत जरूरी काम है, तो आप या तो सवेरे के समय कर लें या शाम के समय कर लें जब धूप इतनी तेज नहीं होती है। अगर बाहर निकलें तो छतरी लेके निकलें या गमछा या फिर कपड़ा रख करके निकल सकते हैं, गीला कपड़ा करके अपने सर पे डाल करके निकल सकते हैं, या साथ में पानी भी जरूर लेके निकलें। ये प्रधानमंत्री जी ने भी अपने उसमें मन की बात में कहा था और ये बहुत जरूरी है कि घर से बाहर निकलें गर्मियों में, इस समय मई जून के महीने में कभी भी आप बाहर निकलें तो साथ में पानी की बोतल जरूर लेके निकलें। तो ये कई चीजें हैं और इस पे मेरे ख्याल से सब श्रोताओं को पता भी होना चाहिए। इसमें रहन सहन की भी बात है, तो अगर कई लोग जो है ना बड़े डार्क क्लोथ पहनते हैं तो हल्के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, लूज कपड़े पहने, टाइट नहीं पहने। तो जो पहले जैसे कुर्ता पजामा लोग पहनते थे गर्मियों में, आप कई बार देखेंगे, तो ये ऐसे कपड़े पहनकर जाना बाहर बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें गर्मी शरीर में बचती भी है और थोड़ी हवा से रहता है तो जो पसीना आता है वेपोरेट हो जाता है, जिससे शरीर को खुद ब खुद जो है ठंडक महसूस होती है। तो ये कई चीजें हैं जो हम लोगों को ट्रेडिशनल जो हम लोग करते रहे हैं और ये बार बार दिशा निर्देश जारी भी होते रहते हैं, और मेरा मानना है श्रोताओं के इसमें अमल करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, और हम कार्यक्रम भी इसीलिए समय समय पर करते रहते हैं कि लोगों को बताया जाए, कहीं कोई चूक ना हो और इस कारण से कोई हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, ऐसा हम चाहते हैं। जैसा आपने पानी का जिक्र किया डॉक्टर साहब, तो क्या जैसे डिहाइड्रेशन हो जाए तो ये कभी कभी फेटल भी हो सकता है क्या?
2: बिल्कुल, डिहाइड्रेशन हो जाए तो भी फेटल हो सकता है, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है और आप जैसे कई लोग हैं जिनको उम्र दराज लोग होते हैं, उनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं तो उसकी वजह से उन्हें पसीना नहीं आता है, तो पसीना आएगा और ज्यादा निकलेगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। और पसीने में और कई तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं पानी पिए और तरल पदार्थों के साथ वाला पानी पिए, जैसे कि प्रधानमंत्री

0: ने कहा नींबू पानी पिए, तो नींबू की वजह से उसमें पोटेशियम सोडियम चीजें आती हैं, तो उससे तरल पदार्थ पानी में आपूर्ति होती है, सादे पानी से बेहतर माना जाता है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: ये चीजें ऐसी हैं कि आपको डिहाइड्रेशन, तो पानी और तरल पदार्थ से आप डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ वृद्ध लोग होते हैं जिनको कुछ दवाएं चल रही होती हैं बीमारियों की वजह से, तो उनको पसीना नहीं आ पाता है, तो कई बार बिना पसीने के अभाव में भी आपका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसमें हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिहाइड्रेशन होगा तभी जो है गर्मी का दुष्प्रभाव होता है, गर्मी के दुष्प्रभाव बिना डिहाइड्रेशन के या स्वेटिंग जब नहीं होती या पसीना नहीं आ रहा होता है तब भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत लगे, सर में भारीपन लगे, चक्कर लगे, बहुत ज्यादा पसीना आए, जो कि आपको लगे कि आप ठंडक में आ गए फिर भी पसीना आ रहा है, तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि आपको गर्मी का आहत हो रहे हैं। कई बार क्रैम्प्स होने लगते हैं, पैरों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है, कई बार आप धूप में जाते हैं आंखों में जलन होने लगती है, तो ये सब चीजें जो नॉर्मली आपको नहीं होती है, और कोई भी नई चीज आपको गर्मी में लगती है तो आप ये मानिए ये गर्मी के या गर्म से ज्यादा तापमान के दुष्प्रभाव है।
1: जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली, लेकिन हमारे साथ आयुर्वेद विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। तो आपने नींबू पानी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री ने बहुत सारे ऐसे शीतल चीजों के बारे में हमें बताया इस कार्यक्रम में, मन की बात में जिक्र किया, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे, आपके पास भी फिर वापस आएंगे और बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी रीना अरोड़ा जी कि एक आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हर मौसम में जब ऋतु चक्र की बात करते हैं और जैसे जैसे ग्रीष्म काल आता है या कोई दूसरा काल आता है तो हमारा जो रसोई है उसका मिजाज बदल जाता है, तो किस तरह से रसोई का लिंक जो है ये आयुर्वेद में ऋतुचर्या जिसको कहा गया है वो कैसे जुड़ता है आपस में?
2: जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है शालिनी जी। अक्सर क्या होता है, जैसे ही ऋतु बदलती है हमारी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। आजकल बच्चों को भी बड़ों को भी ये चीजें समझ नहीं आती हैं, फुल एसी ऑन करके वो गर्मी में भी सोचते हैं वही मौसम है, वही चाउमीन, वही जंक फूड्स और वही स्पाइसी फूड्स वो सब खाते रहते हैं, जबकि बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस मौसम के अकॉर्डिंगली हो रहे हैं। अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर्स है तो हमारी डाइट भी उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमें मार्केट में भी सत्तू दिखने लगता है इस मौसम में, नींबू पानी दिखता है, बेल का शरबत दिखता है, आम पन्ने की बात करते हैं लोग, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लूज कपड़े डालने चाहिए, ये आयुर्वेद में भी एडवाइज्ड है कि आप लाइट कलर्स के कपड़े डालिए, कॉटन डालिए, बिल्कुल सिंथेटिक कपड़े मत डालिए ताकि उसमें से हवा पास हो सके, और सिर पे पानी डालिए, चंदन का यूज कीजिए इन दिनों पे, सर्दियों में अगरू का लेप बताते हैं तो समर्स में बिल्कुल चंदन का लेप आप बॉडी पे कीजिए, सबको पता है चंदन बहुत ठंडा है
1: जी, बिल्कुल।
2: तो ये सब चेंजेस, और डाइट में जैसे कुष्मांड है, बहुत आजकल सीजन में जो चीजें आ रही हैं, पंपकिन जिसको बोलते हैं उसका सेवन बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, कूलिंग एजेंट है, घिया तोरी टंडे टाइप की सब परवल जो सब्जियां आ रही हैं ये भी बहुत कूलिंग है, वाटर बहुत ज्यादा है इनमें तो बॉडी में वाटर कम नहीं होता है, खीरा है एक्सेस में आ रहा है इस सीजन में,
1: सब्जियों में या फलों में पानी का कंटेंट ज्यादा हो उसको।
2: और एक और चीज मैंने देखी है, भिंडी बहुत ज्यादा आ रही है, अब लोग कहेंगे कि ये वायुवादी करती है, ऐसा नहीं है। अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं, वात पित्त कफ तीन दोष होते हैं, और होता क्या है धीरे धीरे इतनी गर्मी से कफ बॉडी में कम होता जाता है, ये कफ खांसी वाला कफ नहीं है, ये कई अच्छी चीजों वाला कफ है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है, जॉइंट्स का लुब्रिकेशन है, बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, आपकी मेंटल एक्टिविटीज में हेल्प करता है, तो उनको बढ़ाने में ये जो सीजनल वेजिटेबल्स आजकल जैसे भिंडी आ रही है, अरबी आ रही है, तो अगर किसी को सूट करती है तो उनको ये खाना चाहिए ताकि आपकी वो इम्यूनिटी, आपका इनहेरेंट जो हेल्थ हमारी होती है ना, ओज जिसको बोलते हैं, बोलते किसी को देख के हम कहते हैं बहुत ओजस्वी व्यक्ति है, तो वो आपका मेंटेन रहना चाहिए, अगर आपकी वो बेसिक स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है तो आपको कोई हीट स्ट्रोक इफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने देखा है आजकल बच्चे भी कहीं ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, वो भी एक कारण है, खाली गर्मी कारण नहीं है कि आपने कुछ खाया ही नहीं, आप चल पड़े ऑफिस के लिए इतनी गर्मी में, तो खाली पानी से गुजारा नहीं होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, स्वेटिंग हो रही है आपको, तो ये बेसिक चीजें भी अगर हम मेंटेन करें तो काफी हद तक इस गर्मी से हम बच सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और बचना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो ये कार्यक्रम है उसमें कुछ और भी हम चीजें शामिल करते हैं, मनोरंजन को भी स्थान देते हैं, तो एक प्यारा सा गीत चाहूंगी कि श्रोताओं के नाम आप सुनाएं, हम सब बैठ के सुनेंगे, आनंद लेंगे, कौन सा गीत जहन में आ रहा है जो आप सुनना चाहेंगे इस समय?
2: कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
1: अरे और ये क्यों पसंद है आपको गीत?
2: आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सबको, सुसाइडल रेट भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो ये गीत अगर सबने सुन लिया तो इतना तो समझ आ जाएगा कि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है,

0: खाली सोशल साइट्स को देख के आप अफेक्ट ना हो, जो आपके पास है, आपको जो सोशल साइट्स पे दिख रहा है शायद उससे ज्यादा है, वो दिखा रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स आपको, सिर्फ उनके पास कुछ नहीं है अंदर। तो आप इस चीज को, इस गाने को अपना मतलब करियर में, लाइफ में, हर जगह एक सामने लिख लीजिए कि कोई भी किसी को मुकम्मल जहां मिला नहीं हुआ वो शो कर रहे हैं सोशल साइट्स पे। डोंट बी अफेक्टेड बाय देम, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और गर्मी से बचिए।
1: चलिए हम भी खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, प्यारा सा गीत सुनते हैं और बहुत ही खूबसूरत संदेश भी इसमें छुपा है उसको भी हम समझते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मैं हूं शारणी मित्तल और कार्यक्रम में हम कुछ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत अभी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए देश के अलग अलग कोनों से 10 पारंपरिक देसी ड्रिंक्स का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई ब्रांडिंग तो नहीं है, लेकिन इनमें हमारी पीढ़ियों का अनुभव छिपा है। तो मैं जानना चाहूंगी मोनी दीपा जी आपसे कि पोषण की दृष्टि से इनका क्या महत्व है। अगर हम जानना चाहें कि उत्तर भारत का उन्होंने बात की है आम पना, पंजाब हरियाणा की लस्सी और गुजरात राजस्थान की छाछ, ये ड्रिंक्स हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में कैसे मदद करती है, ये बताइए
1: जी। प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन में कि पानी पीते रहिए और साथ में उन्होंने हमें 10-12 भारतीय पेय पदार्थों का एक सूची दी है जो हमें एक अंदाजा देती है कि हम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रिंक्स को कैसे शामिल कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट रिहाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए। और इसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है, ये कोई टोटका नहीं है या ये केवल एक अंदाजे की बात नहीं है। ये हमारी नानी दादी के नुस्खों में पारंपरिक रूप से लिखा हुआ है, प्रमाणित है और उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस का हिस्सा है। उत्तर भारत में क्योंकि लू बहुत अत्यधिक पड़ती है और आम का वेजिटेशन वहाँ ज्योग्राफिकली होता है, इसीलिए कच्चे आम को उत्तर भारत में आम पन्ना के रूप में गर्मियों में खाने का एक कल्चर कस्टम रहा है। आम में एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, इस तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो गर्मियों में हमारे पेट को, एसिडिटी को शांत करने में मदद कर सकते हैं। इसमें पोटेशियम है, इसमें पेक्टिन है, कच्चे आम में पेक्टिन रहता है जो एक किस्म का सॉल्यूबल फाइबर है। सॉल्यूबल फाइबर हमारे स्टमक की लाइनिंग को टोन करता है, उसको सूद करता है। तो गर्मियों में जो अपच की समस्या रहती है और जो उसमें इन्फ्लेमेशन, जलन या एसिडिटी की गैस की समस्या हो सकती है, उन सब के लिए ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। तो आम पन्ना इस प्रकार से बहुत बेनिफिशियल है उत्तर भारत में। गुजरात और राजस्थान की तरफ उन्होंने छाछ लस्सी का जिक्र किया है। छाछ लस्सी अपने आप में प्रोबायोटिक्स है, ये तो अपने आप में ही एक क्लेम है। प्रोबायोटिक नाम अपने आप में एक क्लेम है क्योंकि इसमें एक्टिव बैक्टीरिया है। और ये यदि हम घर की बनी हुई दही से बनाते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन, कैल्शियम और बाकी दूध की गुणवत्ता वाली चीजें भी मिलती है। और प्रोबायोटिक्स अपने आप में गट माइक्रोबायोम की जो डाइवर्सिटी है और जो उसके कल्चरल माइक्रोफ्लोरा है उसमें गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ब्रेन गट जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को और गट बैरियर को एनहांस करता है, ब्रेन गट रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। उससे गर्मी में दिमाग भी शांत रहता है और स्ट्रेस रिडक्शन में भी ये बेनिफिट कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने तीसरा जिक्र उन्होंने हमें
0: पंजाब हरियाणा की लस्सी का भी जिक्र किया है।
1: लस्सी भी एक प्रकार का प्रोबायोटिक ड्रिंक है इसमें। और लस्सी में क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द वाटर अमाउंट एडेड हम इसके कॉन्सेंट्रेशन को काफी डाइल्यूटेड रख सकते हैं, तो उसमें हम अपने प्रोबायोटिक के गुण भी हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा हमें फैट या हमें जो दूध का एक्सेस फैट या उसमें जो मलाई रहती है, चिकनाई रहती है, उसको भी हम डाइल्यूट करके उसकी चिकनाई को रिड्यूस कर सकते हैं। तो लस्सी, छाछ और इस प्रकार के भारतीय पेय पदार्थ हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को तो सुनिश्चित करते ही हैं, रिहाइड्रेट करते हैं, रीमिनरलाइज करते हैं। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सटीक है और हमें अपनी पुरानी परंपरा से जुड़ना चाहिए और बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स और एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड, कैफिनेटेड ड्रिंक्स से बचना चाहिए
0: जी। पर आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चे और युवा जो हैं अक्सर जो बाजार में चीजें मिलती हैं, डिब्बा बंद सारी चीजें होती हैं, उन पर ज्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे उसको कहीं प्रमोशन किया जाता है उनको उस तरह से। तो ये जो एक धारणा अब बढ़ रही है और इस कार्यक्रम के बाद मुझे लगता है लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि घर में बनी हुई और ट्रेडिशनली जो चीजें बनती हैं वो ज्यादा लाभप्रद रहती हैं। तो क्या हाइजीन फैक्टर भी उसमें इम्पोर्टेंट है, और क्या बाजार में जो चीजें मिलती हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं?
1: आजकल युवा पीढ़ी पूरी तरह से पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स की तरफ काफी आकर्षित है। उनको वो चीजें चाहिए जो कूल है।

0: वो फैंसी है, वो ट्रेडिशनल और हमारे भारतीय दादी नानी के नुस्खों वाली चीजों को अनकूल समझते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, इनमें इतनी अत्यधिक मात्रा में चीनी एडेड रहती है। एक 300 ml का यदि हम एक कोल्ड ड्रिंक देखें तो उसमें लगभग 10 से 12 चम्मच चीनी रहती है। कंपेयर टू जब हम ये ट्रेडिशनल आम पन्ना और इस तरह के ड्रिंक्स घर पे बनाते हैं तो वो मिनिमली प्रोसेस्ड होते हैं, उसमें हम 1-2 चम्मच चीनी, शहद या गुड़ से काम चला लेते हैं। प्रोसेस्ड ड्रिंक्स में इवन फ्रूट जूसेस जो बाजार में मिलते हैं उसमें परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स अलाउड है, उसमें फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स पड़ते हैं जो उनके कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं और वो परमिटेड भी है। तो कई सारे एडिड प्रिजर्वेटिव्स, परमिटेड फ्लेवर्स, सिंथेटिक कलर्स, प्रोसेसिंग एड्स अलाउड है सिंथेटिक ड्रिंक्स में। और कैफिनेटेड ड्रिंक्स में तो कैफीन की मात्रा रहती है, उसके अलावा उसमें कई प्रकार के अमीनो एसिड्स पड़ते हैं, तो काफी सिंथेटिक फॉर्मुलेशंस जाते हैं इनके फॉर्मुलेशन में। उसके कंपैरिजन में जब हम ये ड्रिंक्स, कोकम ड्रिंक, सत्तू का शरबत घर पे बनाते हैं, एक तो ये मिनिमली प्रोसेस्ड है, हम इनके फॉर्मूला को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसमें चीनी की मात्रा कम रख सकते हैं। और हाइजीन का आपने बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर उठाया, क्योंकि लोग शरबत के नाम पे गन्ने का जूस भी सड़क किनारे बिक रहे हॉकर से, वेंडर से लेते हैं, उसमें किस प्रकार का पानी का इस्तेमाल किया गया है, इवन जो बर्फ इस्तेमाल हुई है क्या वो बर्फ गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरी थी कि नहीं, क्योंकि हम कई बार इन पैरामीटर्स को इग्नोर करते हैं, हम बर्फ के बारे में इतनी तहकीकात नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि पानी उसमें जो यूज किया गया है गन्ने को धोने के लिए या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करने के लिए वो किस प्रकार का रहा है। तो एक मसला उसमें
1: मतलब वो वाटरबॉर्न डिजीजेस भी हो सकते हैं,
0: और गर्मियों में बैक्टीरियल ग्रोथ काफी फास्ट रहती है, तो वाटरबॉर्न डिजीजेस का रिस्क रहता है जब हम ये चीजें खुले वेंडर से या स्ट्रीट फूड से हम खरीदते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इन सब ड्रिंक्स को युवा पीढ़ी को खुद बनाने को घर पे दे कि आप खुद बनाइए, क्योंकि जब वो खुद बनाएंगे तो वो पियेंगे भी।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली, और कोशिश करते हैं कि सब लोग अपने से बनाएं और एक कुछ वेरिएशन लाके बनाएं और कुछ इंटरेस्ट के साथ बनाएं, तो एक अच्छी चीज बनेगी और आपको भी अच्छा लगेगा उसको कंज्यूम करने में। डॉक्टर अनुपम, मैं ये जानना चाहूंगी कि हम जब बात कर रहे हैं मोनी दीपा मैम से, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, न्यूट्रिएंट वैल्यूज भी बताई, तो जब आप एज अ डॉक्टर, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो बहुत एक्सट्रीम लू लगने के कारण या डिहाइड्रेशन के कारण आता है, तो किस तरह के आप पे उनको सजेस्ट करते हैं फॉर रिकवरी?
2: देखिए, हम लोगों के पास जब कोई आ जाता है मरीज जिसको कि लू लग गई होती है या कई बार कहते हैं सरसाम हो जाता है जैसे, तो हीट से इलनेस हो गई है, तो उसको हम लोग यूजुअली तो सादा पानी अगर नहीं है कुछ तो हम लोग कहते हैं, नहीं तो हम लोग तरल पदार्थ वाला देते हैं, जैसा मौनी दीपा मैडम ने कहा, बहुत सही कहा है इन्होंने कि आपको जो है पानी में मिनरल्स डालने पड़ेंगे तो उसके लिए देते हैं। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, नींबू पानी है या बेल का शरबत है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आप अच्छे से दे सकते हैं। लस्सी है तो दही है, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं। अब अगर अस्पताल में आता है तो फिर हम लोग जो है लिक्विड्स जो देते हैं तो फिर हम आईवी फ्लूइड देते हैं, तो उसमें अलग तरीके का देते हैं, लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट अगर उसके कमी है तो ओआरएस का घोल हम लोग पिलाते हैं, तो ओआरएस का घोल भी दे सकते हैं। तो आप अगर वैसे सादा पानी है, समझिए तो पानी, ज़रा एक चुटकी नमक, ज़रा सी चीनी, ये डाल करके और नींबू डाल करके एक अच्छा पेयजल बन जाता है जो कि पूरी तरीके से पौष्टिक होता है। तो हम लोग अस्पताल में, तो अब श्रोताओं के लिए हम नहीं बता सकते क्योंकि हमें एसेस करना पड़ता है, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि कितना डिहाइड्रेशन है
1: जी, बिल्कुल,
2: और ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कैसी चल रही है, नब्ज कैसी चल
1: वो तो
2: रही
1: हर
2: है,
1: पेशेंट का अलग
2: है, उस हिसाब से अलग है, लेकिन श्रोताओं के लिए मेरे हिसाब से जरा सी चीनी, अगर डायबिटीज नहीं है तो ब्लड प्रेशर नहीं है तो जरा सा नमक और नींबू डाल करके पानी में एक बहुत अच्छा पेयजल बन जाता है जो आसानी से हर कोने में, भारत के भी और विश्व के भी हर कोने में चीज मिल जाती है। बाकी अगर आप ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो जैसा मौनी दीपा जी ने बताया, आप लस्सी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, तो आप दूध के कई तरीके के प्रकार की चीजें हैं जो आप बना करके ले सकते हैं
1: जी।
2: तो प्रोबायोटिक्स वाली चीजें कई मिलती हैं, तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत सही बात है कि स्ट्रीट वेंडर्स जब तक ऑथोराइज नहीं है तब तक आप नहीं लीजिए, क्योंकि इस गर्मी में ना सिर्फ गर्मी से लेकिन और बहुत सारे संक्रमण होने की संभावना रहती है, और अगर आप किसी अनऑथोराइज वेंडर से लेते हैं तो ये जो मौसम होता है मई, जून, जुलाई, तो इसमें वाटरबॉर्न डिजीजेस, टाइफाइड, हैजा, कॉलरा, ये सारी चीजें बहुत होती हैं, और ये तो ज्यादा सीरियस डिजीजेस हैं, लेकिन बाकी जो है डायरिया और डिसेंट्री जैसी

0: बीमारियां भी बहुत संभव है कि हो जाएंगी।
1: जी जी और खासतौर पर हम सुनते हैं गर्मियों में पेट संबंधी बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसमें ये कारण भी जुड़ता है, पानी का तो है ही कारण कि साफ पानी नहीं पिया या खाना जो है रखा हुआ बना
0: घर
1: हुआ
0: में
1: खा
0: बना
1: लिया।
0: हुआ खाना
1: जी
0: और ताजा खाना,
1: ताजा
0: ये दो
1: खाना।
0: चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि गर्मियों में जैसा मौनी दीपा जी ने भी कहा, रात का बना खाना अगर आपने सवेरे
1: जी
0: खाया तो कई बार वो खराब जाता
1: खराब
0: है।
1: हो जाता है क्योंकि बहुत गर्मी में इजीली वो बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं उसमें। यहाँ पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी
2: जी
1: रीना जी कि बहुत सारी बातें अभी हमने की पेय पदार्थों के बारे में, अभी मैं आपके पास लौट कर आऊंगी क्योंकि और सारे राज्यों की बात अभी छूट गई है, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि ORS घोल है जो बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है
2: जी
1: नमक और चीनी मिला के, तो क्या आयुर्वेद में भी कुछ ऐसे आसानी से बनने वाले कुछ ड्रिंक्स हैं जो आप बता सकती है हमारे श्रोताओं के
2: जी
1: लिए?
2: इसमें आयुर्वेद में खजूर आदि मंत्र एडवाइज्ड है टेक्स्ट बुक में, इस पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। इसमें इमली डालते हैं, एक वृक्ष अम्ल एक प्लांट है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुनक्का, इमली, खजूर, आंवला और अनार, 4 गुना पानी में इसको भिगो देते हैं 4 घंटे के लिए। उसके बाद मैश करके छान के पी सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली उसको और पतला कर सकते हैं। अगर किसी को मीठा डालना है तो गुड़ या चीनी थोड़ी सी डाल के पी सकते हैं। अब इसमें जो खजूर है और मुनक्का है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए आंवला तो सबको पता है कंप्लीट रसायन है, अनार वैसे ही बहुत अमृत है वो बॉडी के लिए। तो देखो कितने चुन चुन के आयुर्वेद में उसमें डाली गई हैं चीज़ें जो बिल्कुल सारी ठंडी हैं और आपको ऐसा एकदम ORS से ज़्यादा बेटर शायद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी ये, कि अगर आपको अगर घबराहट हो रही है और गर्मी लगी और ये करे आपने ड्रिंक पी ली तो उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको जरा भी वीकनेस रहेगी। ये रूटीन में दे सकते हैं गर्मी में, बच्चों को भी बड़े भी ले सकते हैं, शुगर नहीं है तो बिना शुगर के इनको ही मिक्स करके आप मिक्सी में ग्राइंड करके आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, अनंता, आम, कमल, किशमिश, गुलाब की पत्तियां, चंदन, उशीर यानी खस, खस की ठंडाई बनाते हैं लोग रात को भिगो के, सुबह ग्राइंड करके दूध में, बादाम वगैरह भिगो के वो भी उसमें डालते हैं, ऐसा कुछ घरों में बनता है सुबह ये ड्रिंक। ठंडाई जो आजकल बनी बनाई आती है ये उसका घर पे बनने वाला वर्जन है,
1: अच्छा
2: कि रात को उसको भिगोते हैं, सुबह अच्छे से उसको पीसते हैं, दूध डाल के थोड़ा पानी डाल के थोड़ी चीनी डाल के थोड़ा सा काली मिर्च भी डालते हैं उसमें, एंड दिस इज़ वेरी गुड इन दिस समर सीजन। ये अक्सर बड़े लोग पहले पीते थे। और ये जो प्लांट्स मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी एक यूज करके उसका ड्रिंक बना के भी घर पे पी सकते हैं। लेमन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दिस इज वेरी गुड, चंदन सबको पता है उसको भी पानी में घोल के चीनी डाल के ले सकते हैं, खस, किशमिश, गुलाब, कमल और अनंता ये कॉमन ही है बट बाकी चीजें आप ले सकते हैं। एक और चीज मैं एडवाइस करूंगी, किशमिश, मुनक्का, खजूर, काश्मीरी एक चीज आती है और फालसा, आजकल का सीजन है फालसा बहुत आता है उसमें, तो इन चारों को भी ग्राइंड करके मिक्सी में और उसके बाद एक ड्रिंक बन सकता है। और अगर आप इजाजत दें शालिनी जी तो मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ड्रिंक्स बताए थे 3-4 ड्रिंक्स की रेसिपी बता दूं शायद।
1: हाँ तो ये मैं रेसिपी जरूर आपसे सुनूंगी। अभी मुझे और भी बहुत सारी बातें मोनी दीपा जी से भी पूछनी है, सर से भी पूछनी है, पर यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। डॉक्टर साहब कौन सा गीत आपको अभी याद आ रहा है या बहुत पसंद है आपको?
0: सुख के सब साथी दुख में ना कोई।
1: चलिए तो ये प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम लौटेंगे और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: आप है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और अभी रीना जी से हम कुछ रेसिपीज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मोनी दीपा जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे और ऐसे जो ड्रिंक्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, माननीय प्रधानमंत्री ने उनका खास तौर पर जिक्र किया है, जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सत्तू के शरबत के बारे में उन्होंने कहा है, और इनको सुपर फूड भी सत्तू को कहा जाता है न्यूट्रिशन की दृष्टि से। और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया है कोंकण और गोवा की शान कोकम शरबत और सोल कढ़ी, इसके बारे में उन्होंने बात की है कि एसिडिटी कम करती है। और दक्षिण भारत के पारंपरिक ड्रिंक्स जैसे पानकम, नीरमोर, संभाराम, उड़ीसा का बेलपना, इन सब की भी बात उन्होंने की है, तो इनकी खासियत भी जानना चाहूंगी, इन सब के बारे में बताइए।
1: सबसे पहले बात करते हैं सत्तू की।
0: जी,
1: इसको हम एक्चुअली वे पाउडर से कंपेयर कर सकते हैं। ये इस प्रकार का सुपर फूड है कि इसकी कंपैरिजन वे पाउडर से की जा सकती है, जो कि 10 गुना महंगा है इससे।

0: परंतु इसमें उसी प्रकार का कंपैरेटिव न्यूट्रिशनल वैल्यू आपको ये प्रोवाइड कर सकता है जी। सत्तू भुने हुए चने को पाउडर करके बनाया जाता है, इसीलिए ये पल्स बेस्ड प्रोडक्ट है। और क्योंकि ये घर पे ही बनता है या इसमें सिर्फ ग्राइंडिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो ये मिनिमली प्रोसेस कैटेगरी में आता है। और इसी कारण से इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स काफी मात्रा में रहते हैं, जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ही एनर्जी रिलीज करते हैं।
1: तो काफी समय तक ऐसा लगता है कि
0: पेट भरा महसूस होता है, क्योंकि इनकी डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिलीज ऑफ एनर्जी स्लो रहता है। तो ये स्थिर ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं लंबे समय तक। तो आप 4-5 घंटे आराम से टिक सकते हैं सत्तू के 2-3 चम्मच ड्रिंक बनाकर। और सत्तू का ड्रिंक बनाना आसान है, आप 3-2 चम्मच सत्तू लीजिए, पानी 1 गिलास के करीब डालिए, काला नमक डालिए, उसमें भुना जीरा, पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं और चीनी, गुड़ आप अपने स्वाद अनुसार से डाल सकते हैं। तो ये ड्रिंक अपने आप में 100 ग्राम सत्तू, क्योंकि आपको 20 ग्राम प्रोटीन देता है, और इसमें फाइबर्स हैं, इसमें लीन प्लांट प्रोटीन्स है, तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक कंप्लीट मील है। इसीलिए सत्तू को सुपर फूड कहा गया है। और इवन कॉलेज के बच्चे, जिम गोअर्स, स्पोर्ट्स पीपल, इन सभी लोगों के लिए, डायबिटीज लोगों के लिए, वेट वॉचर्स के लिए, हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये बहुत ही कंप्लीट फूड है। तो सत्तू पेट भी भरता है और ताकत भी देता
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: इसके बाद हम बात करते हैं कोकम की, जो गोवा और कोस्टल एरियाज में बनता है, क्योंकि उन इलाकों में ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, इसलिए कोकम वहाँ अवेलेबल रहता है। कोकम एक प्रकार का आप फंक्शनल फूड की कैटेगरी में हम इसको लिख सकते हैं। और फंक्शनल फूड वो फूड कैटेगरी है जो बियॉन्ड न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो ये एक प्रकार का एक अपने आप में ही अनोखा एक फूड इंग्रेडिएंट है, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड इसका प्राइम इंग्रेडिएंट है। हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड तो आपको समर की इम्यूनिटी बिल्ड करने में मदद करता ही है, परंतु इसके अलावा इसका एक बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट है गार्सिनॉल। गार्सिनॉल अपने आप में बहुत ही कूलिंग इफेक्ट है, ये पेट को ठंडा रखता है और पेट से जुड़ी हुई जो ये एसिडिटी और जलन की समस्याओं को कंट्रोल में करता है। और इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स इतने पोटेंट है कि वो कई बार कंप्लीट बाकी विटामिन से काफी स्ट्रेंथ, इनकी पोटेंसी बहुत ज्यादा है, जो कोकम शरबत में पाए जाने वाला जो एंटीऑक्सीडेंट्स है। और इट इज लोडेड विद कार्डियो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो कोकम एक कंप्लीट फंक्शनल फूड है। और कोकम शरबत केवल गोवा या महाराष्ट्र में ही नहीं, हमें उत्तर भारत में भी हम इसको पी सकते हैं। सोल कड़ी और नीर मोर की भी बात करी है प्रधानमंत्री जी ने। नीर मोर दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है, और नीर मोर का यदि हम लिटरल ट्रांसलेशन करें, नीर पानी को कहते हैं और मोर इज बटर मिल्क, तो पानी वाला बटर मिल्क। तो ये डाइल्यूटेड बटर मिल्क का ही फॉर्म है, जो हम उत्तर भारत में लस्सी छाछ पीते हैं। नीर मोर उसी का ही एक पतला वर्जन है। इसमें काफी मात्रा में 3-4 गुना मात्रा में पानी डाला जाता है, और फिर इसमें हींग, अदरक जैसी, और पेपर, पुदीना, इस तरह का हरी मिर्च का भी तड़का लगाया जाता है। तो इस तरह से ये एक उनका छाछ है, ये भी प्रोबायोटिक ड्रिंक है। और क्योंकि इसमें अदरक, कड़ी पत्ता का तड़का लगता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी मात्रा में हमें हरी पत्तियों से आयरन भी मिला। अदरक डाइजेस्टिव होता है, तो ये क्योंकि हमारा अपच की समस्या गर्मियों में बढ़ती है, डाइजेशन थोड़ा धीमा पड़ता है गर्मियों में, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एक्टिव रखता है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं सोल कड़ी की। सोल कड़ी भी एक प्रकार की प्रोबायोटिक बेस्ड एक रेसिपी है। और जिस जिस खाद्य पदार्थ में हम प्रोबायोटिक, दही, लस्सी जैसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, उसमें अपने आप में हमें एक्टिव बैक्टीरिया के बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे हम उसको कढ़ी के फॉर्म में खाएं, चाहे हम उसको लस्सी छाछ, या हम उसको सांबरम के रूप में या नीर मोर के रूप में खाएं। इन सभी में जो जो मसाले पड़ रहे हैं, अगर जीरा पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा पोटेशियम दे रहा है, काला नमक पड़ रहा है तो वो हमें थोड़ा सोडियम दे रहा है, तो हम जो जो इंडियन हर्ब्स एंड स्पाइसेस मिला रहे हैं, उस प्रकार से हमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स मिलते रहते हैं। तो ये जितने भी हम ट्रेडिशनल हर्ब्स, स्पाइसेस और प्रोबायोटिक्स मिला के ड्रिंक्स बनाते हैं, वो अपने आप में एडेड हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं, क्रोनिक डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, गट माइक्रोबायोम को डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इनके बहुत बेनिफिट्स हैं।
1: जी जी, बहुत सारी खाने की चीजों का नाम आपने लिया एक के बाद एक। तो हमारे श्रोताओं का भी अगर मन कर रहा है तो जल्दी से आप जा सकते हैं, कुछ खा के आए, क्योंकि हम यहाँ पर एक गीत का ब्रेक लेंगे, एक गाना सुनकर आएंगे, आप फटाफट वापस आइए। लेकिन आपकी पसंद का गीत ही सुनेंगे मोनी दीपा जी, बताइए कौन सा गीत सुनवाएंगी
0: जी। हमने इतने सारे, हमने शरबतों की बात कर ली है, कोकम से लेकर बेल शरबत की, तो एकदम टैंगी फ्लेवर हमारी नोट हो चुका है हमारी।

0: टंग पे, तो इसी बात पर हम निबुड़ा निबुड़ा गाना सुनते हैं।
1: ओके, चलिए तो ये गीत सुन लेते हैं, इसमें बहुत अच्छा सा नृत्य भी है। तो ये गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। मैं हूं शालिनी मित्तल और इस गीत को सुनते सुनते एक चीज जो मेरे दिमाग में चल रही थी वो ये कि फिजिकल मूवमेंट भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि सर्दियों में तो खैर कहा जाता है कि आप बैठ जाते हो एक जगह, पर गर्मियों में भी हम देख रहे हैं क्योंकि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल हो गई है उसमें हम फोन मोबाइल टीवी इसके कारण बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहां पर लाइफ स्टाइल का काफी रोल बताया गया है और उसमें योग प्राणायाम और ध्यान

0: इस पर भी काफी स्ट्रेस दिया गया कि इससे भी तनाव कम होता है और इससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उस पर कुछ बताएं। और कुछ ऐसे प्राणायाम भी होते हैं जो खास तौर पर गर्मियों में करने के लिए कहा जाता है?
1: जी शालिनी, सुबह अगर शीतली प्राणायाम करें या जब भी आपको गर्मी लग रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में शीतलता आती है। इस पर बहुत रिसर्च हुई हुई है कि ये शीतलता प्रोवाइड करता है। और अगर हम योगा, जिम, एक्सरसाइज जो भी हमें करना है वो हमें सुबह करना चाहिए। अगर मैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली बात करूं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेस एक्सरसाइजेज हम विंटर्स में एडवाइस करते हैं, समर्स में नहीं करते। बट क्योंकि आजकल के लोग सारा दिन भी कोई काम नहीं करते, ज़्यादातर लोग सेडेंट्री वर्कर हैं और नहीं भी हैं तो काम कम करते हैं, तो इसलिए सुबह एक्सरसाइज जरूर करें और उसके बाद ओवर एक्सर्ट ना करें, अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करें। और जितने भी योगा हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप करें ताकि गर्मी में आपको ना निकलना पड़े और आप आराम से उसके बाद नहा धो के बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सम्यक दिनचर्या में कह सकती हूँ।
0: तो इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम, कि किस तरह से लाइफस्टाइल का रोल होता है? क्योंकि बहुत

0: जितने भी योगा हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप करें, ताकि गर्मी में आपको ना निकलना पड़े और आप आराम से उसके बाद नहा धो के बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सम्यक दिनचर्या में कह सकते हो।
1: तो इस पे आप कुछ ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम, कि किस तरह से लाइफस्टाइल का रोल होता है, क्योंकि बहुत आजकल केसेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस के।
2: देखिए, लाइफस्टाइल का, रहन सहन का रोल तो हर चीज में है और बीमारी के बचाव में बहुत ज्यादा है। गर्मियों में तो बहुत जरूरी है कि आप अपना व्यायाम करें, लेकिन इसको ध्यान रखें कि व्यायाम आप ठंडे समय में करें, तो अर्ली मॉर्निंग करें जहां तक संभव हो, और दिन में तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप को शाम को कर सकते हैं तो फिर खाने के बाद या शाम को खाने से जस्ट पहले करें। खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा एनर्जी एग्जर्ट नहीं कर सकते, तो बहुत ज़्यादा व्यायाम आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन खाने से जस्ट पहले कर सकते हैं। लेकिन वो भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब लू चल रही होती है तो रातें भी गर्म होती हैं, और उस समय फिर बाहर जा करके आप बहुत ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाएंगे। लेकिन शरीर का चलना ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा कि बैठने से काम नहीं होता, सर्दियों में तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मी ऐसा मौसम है जबकि आपको चलना चाहिए और व्यायाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस पर ध्यान रखें कि जो लोग अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, या जो बच्चे हैं या बड़े हैं, वयस्क लोग हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए कि जब वो व्यायाम कर रहे हैं तो साथ में कुछ तरल पदार्थ वाला पानी रखें, या पानी पीने के बाद व्यायाम करें, या व्यायाम करने के बाद फौरन पानी लें, क्योंकि जब भी आप व्यायाम करेंगे तो थोड़ा पानी, पसीना तो आप लूज करेंगे ही, और पसीने के साथ तरल पदार्थ भी लूज करेंगे, तो उसको जो है शरीर में रिप्लेनिश करना, आपूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान दे करके व्यायाम करें। बहुत ज्यादा जिनमें एनर्जी लग रही है या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है उसको ध्यान दे। ऐसे में जिन लोगों को बीमारी है ब्लड प्रेशर की, शुगर की या दिल की, उनको जो है बहुत ध्यान से अपने डॉक्टर से पूछ करके तभी व्यायाम करना चाहिए या कोई नया व्यायाम शुरू करना चाहिए।
1: जी
0: चालीन जी, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी इसमें। समर्स में सबको अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा नैप जरूर लेना चाहिए आफ्टरनून में। उससे भी आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है और आप बाकी रात तक आप काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा है ग्रीष्म ऋतुचर्या में, कि समर्स में हो सके तो थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए हमें।
1: और मोनी दीपा जी, हमने बहुत सारी ड्रिंक्स के बारे में बात की, पर एक ड्रिंक और है जो दक्षिण भारत में बहुत पॉपुलर है और पारंपरिक ड्रिंक्स में शामिल होती है, वो है पनकम। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए।
3: पनकम दक्षिण भारत में बहुत ही प्रचलित ड्रिंक है और ये बहुत ही पतला रसम जैसा एक बेवरेज है। ये इसके तीन ही मेजर इंग्रेडिएंट्स है, इसमें गुड़ पड़ता है, इसमें पेपर पड़ता है और इसमें जिंजर, सूखा जिंजर जिसको सौंठ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें कैलोरीज, क्योंकि ये बेसिकली वाटर बेस्ड ड्रिंक है, तो इसमें कैलोरीज 100 से भी कम रहती है, तो काफी वेट वॉचर्स के लिए भी इस तरह का ड्रिंक फायदेमंद है। और इसमें बाकी चीजों का भी कोई लोड नहीं है। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, क्योंकि ये जैगरी बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ बेस्ड ड्रिंक है, गुड़ में आयरन रहता है और साथ में इसमें पेपरिका, पेपर का इस्तेमाल किया गया है, तो पेपरिका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन में काफ़ी मदद करता है। ये एक सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बनाता है उस न्यूट्रिएंट के साथ, तो पेपरिका पड़ा हुआ जैगरी, तो उसमें से आयरन एब्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़िया रहता है। तो पेपरिका और गुड़ का ये बहुत ही साइंटिफिक कॉम्बिनेशन किया गया है। और पेपर का इसके अलावा भी एक रोल है। पेपर आपको गर्मियों में भी हमारे ब्रीदिंग कंजेशंस को ये रिलीफ करता है। ब्रीदिंग की समस्या आजकल पोल्यूशन के कारण गर्मियों में भी रहती है, तो पेपरिका, क्योंकि इस ड्रिंक में रहता है पेपर जिसे काली मिर्च कहते हैं, तो ये ब्रीदिंग रिलेटेड समर कंजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये ड्रिंक बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बच्चों को खांसी और थ्रोट इन्फेक्शन की काफ़ी समस्या रहती है। तो पानकम अपने आप में एक कंप्लीट लिक्विड वाटर बेस्ड ड्रिंक है, प्लस इसके थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं।
1: जी, एक आध ड्रिंक्स और बच गई थी जो मैं चाहूंगी कि वो भी श्रोताओं तक पहुंचे। एक तो उन्होंने बताया था संभाराम और ओडिशा का बेलपन्ना।
3: जी, संभाराम एक प्रकार का पनकम का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और हैदराबाद की तरफ पनकम को ही संभाराम के रूप में का नाम दिया गया है। इसका बेसिक फॉर्म्यूलेशन पनकम जैसा ही है और कई लोग इसमें गुड़ ना डाल के मिश्री डालते हैं, पर मोर और लेस इसके मेजर थ्री इंग्रेडिएंट संभाराम और पनकम के सेम ही है। बेल शरबत उड़ीसा में बहुत पॉपुलर है और बेल शरबत भी अपने आप में एक फंक्शनल फूड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि बेल में पाए जाने वाले टैनिन्स, जो टैनिन्स जो हमें चाय से भी मिलते हैं, हमें कॉफी से भी मिलते हैं, बट बेल में पाए जाने वाले ये टैनिन हमारे डाइजेस्टिव स्लगिशनेस जो समर्स में आती है उसको रिलीफ करता है। ये डायरिया और डिहाइड्रेशन दोनों चीज़ों से ये टैनिन हमें से

0: करता है और बेल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। तो विटामिन सी युक्त कोई भी बेवरेज आपकी समर इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है, लू से बचाता है, और विटामिन सी बीइंग एंटीऑक्सीडेंट तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी हैं। तो हमारे जो सेल्स में गर्मी की वजह से जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स में डैमेज होता है उसको ये हील करता है। तो बेल रस अपने आप में बहुत ही एक थेरेप्यूटिक ड्रिंक जैसा है और ये भारत में आजकल उड़ीसा के अलावा बाकी कई क्षेत्रों में भी काफी मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है।
1: बिल्कुल, बहुत सारे ड्रिंक्स के बारे में बात हुई लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बीच में चाय कॉफी का जिक्र किया, तो मेरे जहन में ये सवाल आया, मैं डॉक्टर अनुपम प्रकाश से करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब बहुत ही कॉमन है और इंडिया में, और खासतौर पर अगर हम वर्किंग करें, वर्किंग भी नहीं घर में भी अगर हम रहते हैं तो बहुत ही इजीली, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो, हम कहते हैं अरे चाय पी लो, कॉफी पी लो, तो ये सही है कि नहीं? मतलब बाकी ड्रिंक्स की तो हम बात कर रहे हैं पर विच इज द मोस्ट कॉमन उसकी बात हमने नहीं की है, तो वो भी
2: देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि लोग चाय कॉफी या जैसे कि पहले बात हुई कि बच्चे लोग जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, कैफिनेटेड बीवरेजेस पीते रहते हैं, लोग ड्रिंक करते रहते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं ये सब नुकसानदेह हैं। ये सब हालांकि लिक्विड हैं, मतलब सब तरल पदार्थ है मतलब, लेकिन ये सब जो है ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इनमें जो कैफीन होता है या टैनिंस होते हैं ये थोड़ा डायरेसिस करते हैं, मतलब पेशाब बढ़ाते हैं। तो एक तरफ तो आप पानी पीते हैं लेकिन इनमें जो तत्व होते हैं टैनिंस या कैफीन या कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफिनेटेड बीवरेजेस होते हैं, तो वो जो है वो आपको यूरिन बढ़ाते हैं। तो ये लेने से आपका ब्लड डिहाइड्रेशन करेक्ट होता है, बल्कि नॉर्मल आदमी में भी डिहाइड्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो गर्मियों में चाय या कॉफी जैसे पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर में पानी की कमी होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
1: जी जी, रीना जी कुछ जो ड्रिंक्स की हम बात कर रहे थे, मोनी दीपा जी बता रही थी, उनकी रेसिपी आप बताना चाह रही हैं, तो प्लीज शेयर करें हमारे लिसनर्स के साथ।
3: जैसे दीपा जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इनके कंटेंट्स, पनकम में गुड़ डलता है, ड्राई जिंजर पाउडर, लेमन भी डालते हैं इसमें कुछ लोग, और छोटी इलायची डालते हैं बहुत, उस पर रिसर्च पेपर्स हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव है, ब्लैक पेपर कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है, नमक डालते हैं, एडिबल कैम्फर भी डालते हैं इसमें, और तुलसी के 3-4 पत्ते डालते हैं, ग्रीन चिली भी कुछ थोड़ा बहुत डालते हैं अगर किसी को डालनी हो तो। इसको ग्राइंड करके ये पानी में जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जैगरी डाल के ये लोग पीते हैं, इसको पानकम बोलते हैं। सोल कड़ी एक मैंने देखा था, इसमें क्यूमिन डलता है, गार्लिक डलता है, ग्रेटेड कोकोनट डलता है, और कुछ इसमें ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, ये डाल सकते हैं, और इसको भी ग्राइंड करके और पीते हैं। ऐसे ही नीरमोर भी एक तक, संबरम भी एक तक्र का यानी छाछ का एक मॉडिफाइड वर्जन है जो इधर बहुत कॉमन पीते हैं लोग। तो ये कुछ ड्रिंक्स हैं जो हमारी रेसिपी मतलब थोड़ा सा अलग थी इधर नॉर्थ इंडिया से, तो ये सब पी सकते हैं गर्मी से बचने के लिए, और इनकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली भी, और दीपा जी ने भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको।
1: जी, तो गर्मियों में पारंपरिक शीतल पेय, इस विषय पर हमने बहुत सी आज यहाँ पर चर्चा की, और इस चर्चा से स्पष्ट हुआ कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित जीवन शैली, उचित आहार, पर्याप्त जल सेवन और हमारे पारंपरिक भारतीय पेय जो है वो अगर हम नियमित उनका उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जिस प्रकार स्थानीय और पारंपरिक खाद्य और पेय पदार्थों को अपनाने का आह्वान किया गया है, वो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास है बल्कि स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हमारे सभी सम्मानित विशेषज्ञों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर आप निकाल कर आए हैं, विचार हमारे श्रोताओं तक साझा किए हैं। हमारे साथ, मैं बता दूं, इस चर्चा में शामिल रहे डॉक्टर अनुपम प्रकाश, आप डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, नई दिल्ली में। हमारे साथ रहीं डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद विशेषज्ञ, और हमारे साथ थी मुनी दीपा तालुकदार, आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: और आप सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद जिन्होंने इस विशेष कार्यक्रम को सुना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, पर्याप्त पानी पिएं और इस गर्मी में अपने पारंपरिक पेय पदार्थ को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इस कार्यक्रम के संयोजक थे प्रमोद कुमार वत्स, प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान, और इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ थे यानी शालिनी मित्तल के साथ, और स्वीकार कीजिए अब मेरा भी नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

सो म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफएम रेनबो और रेनबो दे टाइम हो गया जी 12:02:35 मैंने पता इस टाइम ऑलरेडी बहुत सारे काम तुसी हुन तक खत्म कर चुके हो और जो कुछ प्लान्स दी जो कुछ कामां दी लिस्ट बनी हुई उन्हां च हुन अगला काम ए है आराम नाल बैठो अपनी एक कॉपी कड्डो पेन कड्डो और करना की है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थोड़े लिए लेके आई हैं क्योंकि देखो तुहानू पता है टाइम किस चीज़ का हो चुका है। प्रोग्राम होम स्वीट होम लैके हाजिर है जी मैं यानी थोड़ी अपनी दोस्त रिचा और मेरे नाल तुसी इस प्रोग्राम नू एंजॉय कर सकते हो ठीक दोपहर दे 1 बजे तक और बहुत खास रहने वाला है आज का ये प्रोग्राम इसलिए नहीं क्योंकि संडे है आज और संडे स्पेशल तो ऑब्वियसली होता ही है और रेसिपी भी थोड़े नाल इस प्रोग्राम से शेयर होती है और नाल ही नाल कुछ छोटे छोटे तरीके है ना सेफ्टी के तरीके हो सकते हैं या कुछ DIY तरीके हो सकते हैं कुछ हैक्स हो सकते हैं कुछ नुस्खे हो सकते नहीं जिन्हां नाल असीं देखो अपने आप नूं तां सवार ही सकदे आ नाल ही नाल जिहड़ा साडा सोहणा जिहा छोटा जिहा निक्का जिहा प्यारा जिहा घर हुंदा है ना जी सो स्वीट स्वीट बन जांदा होम स्वीट होम प्रोग्राम दा नाम भी है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है और तुहाडे कोल भी कोई खास रेसिपी हुंदी है तुसीं की कुछ अज खास बना रहे हो तो मेरे नाल इस प्रोग्राम च शेयर कर सकदे हो 9855101023 नंबर ते व्हाट्सएप नंबर ते। फिलहाल एक एक्सपर्ट भी साढ़े नाल जुड़नगे और मैं पहले कहा से कि गर्मियों का सीजन चल रहा है इस सीजन दे विच किवें अपने आप नूं हेल्दी रखिए कि कुछ खास समर फूड हुंदे ने सो उन्हां बारे भी जानकारी लवांगे है ना। लेकिन सब तो पहला ना एक जिहड़ा म्यूजिक है ना उस दे नाल अपनी थोड़ा जा समझ रहे हो ना दिल दी एक वाइब भी सैट कर ली और अरे वाइब नहीं बोल रही हूँ वाइब बोल रही हूँ वाइब सो ये वाइब जिहड़ी बन रही है स्टूडियो दे विच जस्सी सिद्धू दी आवाज़ दे विच प्रोग्राम दी शुरुआत कर रही हाँ डिंग टिंग टिंग टिंग तुहाडे दिल च हो रही है करो करो करो नाल नाल पेन कॉपी लैके बैठी हो आ रही हूँ मैं इस गीत तो बाद स्टे ट्यून्ड

0: ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ 102.7 ਐਫਐਮ ਰੇਨਬੋ ਟਿਊਨ ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਰਿਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਰ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਸੋ ਹੈਲਦੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਦਵਨੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਲੋ
1: ਹੈਲੋ
0: ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਮ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਮੇ
1: Thank you so much.
0: Okay, so let's talk about first the most trending word of social media right now and that is protein. Protein powder, protein shake, protein supplements, protein rich diet. Matlab main keh rahi hu itna protein to main shayad ek din mein bhi nahi le rahi hu jitna social media par mujhe ek din mein mil jata hai.
1: To ek
0: to ek common हाँ जी तो मैं मतलब पूछना चाहूँगी सबसे पहले एक कॉमन पर्सन के लिए प्रोटीन का एक्चुअली काम क्या है बॉडी में और कितने ग्राम मतलब हम डेली ले सकते हैं और किन चीज़ों से ये जो डिमांड है हमारी प्रोटीन की ये पूरी हो रही है
1: बिल्कुल एक्चुअली प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है हर चीज के लिए आपकी मसल बिल्डिंग के लिए आपके हेयर टेक्सचर नेल्स छोटी से छोटी मतलब नेल कितना छोटा बॉडी पार्ट है पर उसके लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे को 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और अगर आप बहुत एथलेटिक हैं तो 1.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट बट यहाँ पे हम सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करते हैं जो जरूरी ये है कि जो हम प्रोटीन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं वो देखना सबसे ज्यादा जरूरी है
0: ओके
1: टेक दिस कि हम मतलब जो प्रोटीन सोर्स लें एक तो बहुत ज्यादा हम फैंसी ना लें हम नॉर्मल घर की चीजों से प्रोटीन अपना पूरा करने की कोशिश करें रादर देन एनी फैंसी पाउडर्स और समथिंग
0: ओके और ये जो घर की चीजें अगर इनकी बात करें तो ये क्या हो सकती हैं
1: देखो वेजिटेरियंस के लिए सत्तू बहुत अच्छा है पनीर बहुत अच्छा है अगर आपको थायराइड का इश्यू नहीं है तो आप टोफू ले सकते हैं दाल चावल एक कंप्लीट प्रोटीन ऑप्शन है क्योंकि जो चीजें जो अमीनो एसिड्स दाल में नहीं है वो चावल आपको कंप्लीट करके देता है तो वो एक कॉम्बिनेशन में एक अच्छा आपको प्रोटीन दे देते हैं
0: ओके और ये जरूरी नहीं कि हर टाइम लाइक हमें ब्रेकफास्ट में भी दोपहर की मैं बात करूँ लंच में भी मतलब हर एक टाइम प्रोटीन लेना जरूरी है या फिर एक चलो अगर दाल चावल कॉम्बो मील एक परफेक्ट है तो हम दोपहर में भी ये चीज ले सकते हैं खाली
1: हाँ आप दोपहर में भी ले सकते हैं प्रोटीन को जब हम ज्यादा अगर आप कोई मील ले रहे हो जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें जब हम प्रोटीन और फाइबर ऐड कर देते हैं ना तो वो हमारे को सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारे को एकदम शुगर स्पाइक मिलेगी कार्बोहाइड्रेट्स खा के और अगर उसके साथ अगर हम प्रोटीन ऐड कर लेंगे तो वो शुगर स्पाइक एकदम आपको नहीं होगी वो एक सस्टेन्ड कर्व रहेगा जो ये चीज डायबिटिक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
0: ओके तो चलो ये तो प्रोटीन की बात हो गई और समर्स में खासकर मैं बात करूँ कि ना कई बार ये दिल होता है कि रोटी नहीं खानी आज मन नहीं है रोटी खाने का कुछ और बना दो कुछ और है ना तो ये जो रोटी का एक अल्टरनेट है क्या हो सकता है इस सीजन में खासकर उनके लिए जिनके पास टाइम भी नहीं है रोटी बनाने का और हेल्दी एक ऑप्शन हो
1: हाँ हेल्दी ऑप्शन के लिए आपने किनवा सुना है किनवा को अगर हम कर्ड में मिक्स करके जैसे हम कर्ड राइस बनाते थे हम अगर किनवा जैसे हम सोक करके 20-30 मिनट्स उसको बॉईल कर लें और जब वो ठंडा हो जाए उसको हम कर्ड में ऐड कर लें उसके ऊपर हम तड़का लगा सकते हैं जैसे मस्टर्ड सीड्स का और उड़द दाल का और थोड़े से पीनट सॉल्ट और अपने हिसाब से हम अगर मिर्ची और वो ऐड कर ले करी पत्ता तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक एक साथ भी हमें मिल जाएगा और हमारे गट के लिए भी बहुत अच्छा है अगर ये भी नहीं है तो हम चिया सीड्स और कर्ड को भी ले सकते हैं मिंट डाल के ये भी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है
0: ये चिया सीड्स आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं तो ये मतलब दही में एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है चिया सीड्स का
1: देखो चिया सीड्स एक प्रीबायोटिक है लेकिन इसमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इसको बिना सोक किए हुए कभी यूज नहीं करना
0: ओके
1: कभी भी यूज नहीं करना और मतलब जब हम इसको कर्ड के साथ कंबाइन करते हैं तो ये मतलब आप सोचो कि हमारे गट हमारे स्टमक के लिए

0: बिना एक अमृत है।
1: अच्छा, तो मतलब इसको सोक करने का क्या तरीका है चिया सीड्स को?
0: आप चाहे अगर आपने कर्ड में यूज करना है तो आप उसको कर्ड में ही सोक करके मिनिमम 1 आवर रख लीजिए, अदरवाइज आप उसको वाटर में सोक करके रख सकते हैं और आप उसको अपने बाकी ड्रिंक्स में ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपने कर्ड के साथ यूज करना है तो आई वुड प्रेफर कि आप कर्ड में ही सोक करो और बाद में उसमें मिंट और जैसे कद्दूकस किया हुआ हम खीरा ऐड कर सकते हैं और उसको एक रायते के फॉर्म में खा सकते हैं।
1: अच्छा, ये रात में भी ले सकते हैं?
0: नहीं, रात में आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड कर्ड क्योंकि कई लोगों को म्यूकस की प्रॉब्लम होती है और थोड़ा वो हमारे चेस्ट के लिए हैवी हो जाता है।
1: ओके, चलो। और अगला, मैं छोटे छोटे बच्चों की बात करूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए ना आजकल कुछ हेल्दी ड्रिंक ऑप्शंस, नो डाउट बहुत सारी रेसिपीज मदर्स जो हैं सर्च करती रहती हैं, तो उन्हें हम, अगर मैं हेल्दी ड्रिंक्स की बात करूं तो बच्चों के लिए क्या समर स्पेशल हो सकता है?
0: हाँ, समर स्पेशल हम बच्चों को हम सत्तू दे सकते हैं, हम सत्तू पाउडर भी मिल जाता है और वैसे भी हम रोस्टेड चना को रोस्ट करके मतलब ग्राइंड करके सत्तू बना सकते हैं। उसको आप ठंडे पानी में डाल के साथ में जीरा डाल के हल्का सा नमक मिंट लीव्स डाल के दे सकते हैं बच्चों को। ये उनकी मसल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे बच्चा खेल के आए उसको दे दो। या आप मैंगो मैंगो क्योंकि समर सीजन है, वी शुड नॉट अवॉइड मैंगो, हम थोड़ा मैंगो जैसे 40-50 ग्राम्स मैंगो पल्प उसको 2-3 चम्मच कर्ड में डाल के उसमें हम थोड़ी सी सौंफ और मिंट डाल के वो भी बच्चों को दे सकते हैं।
1: ओके, सो आई थिंक ये नाइस ऑप्शन है, क्योंकि मैंगो तो आई थिंक बच्चों का सबका ही फेवरेट होता है, मेरा खुद का फेवरेट है,
0: हाँ
1: और हम अवॉइड नहीं
0: जो
1: कर पाते मैंगो को,
0: अवॉइड
1: तो
0: करना ही नहीं चाहिए। जो आपको जो फ्रूट जो ग्रेन जिस सीजन में मिल रहा है ना उसका मजा उठाना चाहिए।
1: ठीक है। सो अब सीज़न की बात हो रही है, तो मैम इस सीज़न के कुछ सुपर फूड्स की हम बात करें, उनके न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करें, तो कितना ज़रूरी है और क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें समर में हमें बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए?
0: अगर हम समर में आते हैं, एक तो वाटरमेलन, वाटरमेलन हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें 92% वाटर है और उसमें लाइकोपीन होता है जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को जो सन रेज है उससे भी बचाता है और हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। तो वाटरमेलन भी सर्दियों का तोहफा है आई वुड से। और क्यूकम्बर खीरा भी बहुत अच्छा है, वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है उसमें, विटामिन के, पोटेशियम, और ये हमारी वाटर को ना होल्ड करके रखता है हमारी बॉडी में ताकि हमारा पेट थोड़ा शांत रहे। और
1: ओके,
0: इसके ऊपर अगर हम काला नमक और कुछ ऐसे डाल ले तो ये काला नमक नींबू तो ये और हमारे को बेनिफिशियल हो जाएगा।
1: जी
0: और हम समर्स में जैसे पुदीना हमारे पास अवेलेबल होता है, हम पुदीने को पानी जैसे ग्लास बॉटल में पानी ले लिया उसमें पुदीने को डाल के रख दिया, हम उसमें बेजल सीड्स जिसको हम तुलसी के सीड्स कहते हैं वो डाल के रख सकते हैं और थोड़ा सा एक लेमन स्लाइस डाल दिया, वो एल्कलाइन वाटर बन जाता है, वो हमारे पेट को बहुत शांत रखता है क्योंकि
1: ओके।
0: गर्मी में हम देखते हैं कि बहुत लोगों को होता है कि पेट खराब हो रहा है। तो ये चीज उसके लिए बहुत अच्छा है। पुदीना मिंट पुदीना डाल लिया, थोड़ा सा बेजल सीड्स डाल लिया और एक स्लाइस या आपने ऑरेंज का डाल दिया या आपने सिर्फ लेमन का एक स्लाइस डाल दिया।
1: अच्छा, ये वाटर कोई भी ले सकता है?
0: ये वाटर आप अपने फ्रिज में बना के रख लो, जब आपको ज्यादा गर्मी आप बाहर आते हो तो यू कैन सिट डाउन एंड हैव दिस वाटर।
1: ओके, नाइस। सो एक तो ये, चलो वाटर, मुझे लग रहा है जो दोस्त सुन रहे हैं इस टाइम पे, बड़े अच्छे अच्छे आप कुछ तरीके, कुछ और सिंपल फूड्स हैं, कोई कोई फैंसी फूड भी नहीं है, कुछ आइटम्स भी नहीं है,
0: हमें
1: नॉर्मली।
0: फैंसी चाहिए ही नहीं है। अब हमारे बड़े जिनकी हेल्थ इतनी अच्छी है वो सिंपल फूड्स खा रहे थे तभी वो इतने हेल्दी थे, हम लोग इतने पैकेट वाले खानों में घूम गए हैं कि हमने अपने सिंपल फूड्स छोड़ ही दिए हैं।
1: एग्जैक्टली। और जो सत्तू की बात हुई है और ये जो वाटर की बात हुई है, आई थिंक ये तो हम छोटी छोटी चीज़ें, अभी मेरे ख्याल जितने दोस्त सुन रहे हैं आई थिंक उन्होंने करना शुरू भी कर दिया होगा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं कुछ कॉम्बो की बात करूँ, जैसे इस समर सीज़न, तो क्या कुछ एक दो कॉम्बोज जिन्हें हम ले सकते हैं, लाइक दोपहर में एक मील के टाइम पे, या फिर कुछ ऐसे कॉम्बो जिन्हें हमें एक साथ नहीं लेना चाहिए?
0: हाँ, जो हम ले सकते हैं, एक तो हमें जैसे कई बार मीठा खाने का बहुत मन करता है तो हम खाने के 1-1.5 घंटे के बाद हम मैंगो के ऊपर थोड़ी सी कर्ड डाल के और थोड़ा सा ऊपर कोई भी सीड्स में भी पम्पकिन सीड्स डाल के ले सकते हैं, उससे हमारी मीठे वाली क्रेविंग भी

0: और मैंगो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि एक टाइम पर पूरा मैंगो नहीं लेना. आप कोशिश करें कि सारी फैमिली बैठे तो आप शेयर करें, मतलब
1: ओके
0: पूरा मैंगो ना लें. और अगर अवॉइड करने की बात करें तो जैसे हम वाटरमेलन जब खाते हैं, बच्चों को यूजुअली ये मदर्स कहीं बहुत गलती करती हैं, वाटरमेलन के साथ ही मिल्क दे दिया. ये बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वाटरमेलन हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक पे ही डाइजेस्ट होने लग जाता है, तो उसकी फर्मेंटेशन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में ही शुरू हो जाती है. तो जब हम उसको मिल्क के साथ दे देते हैं तो वो बहुत एसिडिटी और ब्लोटिंग कॉज करता है.
1: ये जो मैं कई बार वीडियोस देखती हूँ, कुछ लोग आई थिंक मिल्क में ये वाटरमेलन ऐड करके कुछ काइंड ऑफ एक
0: वो
1: कैलो ड्रिंक
0: जो
1: बना रहे होते।
0: आयुर्वेदा के हिसाब से तो बहुत ही गलत है.
1: ठीक है, सुन रहे हैं आई थिंक, है ना, सारे लिसनर्स दोस्त सुन रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक छोटा सा क्वेश्चन और, ये जो शाम को ये 4 बजे वाली भूख है ना, कि कुछ तो दे दो खाने को, कुछ तो ये शाम वाली भूख का क्या ऑप्शन निकल सकता है?
0: उसके लिए एक तो वाटरमेलन बहुत अच्छा है. आप अगर हम वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन बहुत अच्छा है, बट अगेन हमने ध्यान रखना है कि वाटरमेलन खाने के 1-1.5 घंटे बाद ना हम दूध पिए ना हम पानी पिए. और सेकेंडली हम मखानों की चाट बना सकते हैं. चाट वैसे ही सबको अच्छी लगती है. हमने उसमें टमाटर, प्याज, खीरा ये सब डाल के, नींबू डाल के, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल के एक अच्छी सी चाट बना लें. चाहे उसमें थोड़ी सी इमली डाल लें या हम नींबू डाल लें, वो हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है. वो बहुत अच्छा है. और बच्चों को हम उस टाइम पे हम सत्तू ड्रिंक भी दे सकते हैं, क्योंकि यूजुअली तब वो खेल कूद के आते हैं, तो वो भी ड्रिंक उनके लिए बहुत अच्छा है. हम पपाया के ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल के, पम्पकिन सीड्स डाल के खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है. हेवी फूड्स अवॉइड करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए. मखाना, रोस्टेड चना, इनकी चाट लें, या कोई ऐसा पपाया वगैरह ऐसा फ्रूट ले लें, वाटरमेलन ले लें, जो हमारे मतलब उसके पेट के लिए भी इजी रहेगा. और
1: जी
0: कोशिश करें जल्दी, मतलब हम अपना डिनर भी 8 बजे तक कर लें, उससे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए.
1: ये नहीं कि फोन में खोई रहो और खाना ठंडा हो गया फिर मम्मी की डांट ही
0: हाँ
1: पड़नी है।
0: हाँ
1: ठीक है, सो मैम जाते जाते क्या आप एक खास एडवाइस कह लो या एक छोटी सी, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी दोस्तों को क्या मैसेज आप देना चाहोगे?
0: मैं एक तो ये बेनिफिट दे मतलब सबको बताना चाहूंगी कि जो भी आपको जिस सीजन में जो जो मिल रहा है वो सब एंजॉय करो. आप एक बैलेंस्ड मील लो, हर चीज की क्वांटिटी ठीक रखो, कॉम्बिनेशंस अच्छे रखो, और हर वो चीज एंजॉय करो जो नेचुरली आपको मिल रही है. पैकेट फूड के चक्रों में मत पड़ो. अपने घर का खाना खाओ, बाहर का खाना मत खाओ, क्योंकि बाहर का खाना बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है और वो हमारे मतलब हेल्थ को और ज्यादा खराब करता है.
1: जी
0: और जैसे हमने प्रोटीन की भी बात की थी, आप थोड़ा थोड़ा शुरू करो. ले एकदम वो मतलब अगर मैंने सोचा है कि मैंने 1 ग्राम लेना ही लेना है, वैसे मत करो. आप हर अपनी बॉडी को टाइम दें कि वो उस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर रही है. अपनी बॉडी को पढ़ें, क्योंकि हर एक बॉडी डिफरेंट है. अगर मैं कहूँ मेरी और आपकी, मुझे जो चीज मुझे सूट करेगी शायद वो चीज आपको सूट ना करे. तो अपनी बॉडी के हिसाब से आप चलें. कोई भी फैट डाइट्स या कोई भी चीज आपने इंस्टाग्राम पे देखी वो ना फॉलो करें. आप अपनी बॉडी को टाइम दें और उसकी डिमांड सुने.
1: जी, तभी तो इस चीज़ के लिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट बनाए गए हैं जस्ट लाइक यू।
0: बिल्कुल
1: थैंक यू सो मच रवनीत कौर मैम, आज आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और इतनी अच्छी जो इन्फॉर्मेशन दी है, छोटे छोटे टिप्स बताए हैं उनके लिए, थैंक यू सो मच मैम।
0: थैंक यू नाइस टॉकिंग टू यू.
1: ओके थैंक यू।
0: बाय.
1: सो ए संजी दवनीत कौर मैम और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सी गए आज और खास इन्होंने जानकारी सानू दिती कि देखो छोटे छोटे तरीके, एक तो प्रोटीन वाले सानू जानकारी मिली है कि हाँ हर एक चीज़ तो आप प्रोटीन ले सकते हैं लेकिन किन्ना को लेना चाहिए है ना जी, की तरीका है क्योंकि बॉडी से अब्जॉर्ब भी होना चाहिए और नाल ही नाल सत्तू की गल हुई है या फिर आप जड़े आप वॉटर बनाया है बच्चों के लिए और सीजनल फ्रूट को लेकर गल हुई है क्योंकि लेने तो जरूर चाहिए हैं, कोई भी सीजन हो, सर्दियों का हो, गर्मियों का हो, मॉनसून सीजन क्यों ना हो, जिस सीजन से जो भी सब्जियां फल आ रहे हैं उन्होंने आप जरूर लइए, खास चीज़ा बनाइए और दही के जिहड़ा चिया सीड्स की गल की है वह भी बहुत वधिया एक मिड टाइम कह लो कि छोटी एक छोटी जी हंगरी वाली एक छोटा जहा मिड टाइम वाला एक स्नैक होंगे ना, उन्होंने लिए भी ये फ्रूट्स बहुत वधिया होंगे।

अरे क्या हुआ टाइम 12:48 45 सेकंड टाइम ए हुआ है और टाइम दे नाल चलो हुण मैनू पता है अज संडे दे बहुत सारे प्लान्स हैं और किचन दे विच की कुछ खास बन रहा है तुसी देख लो बाकी नहीं समझ आ रहा था तुहाडी हेल्प लई मैं बैठी हां इत्थे रिचा तुहाडे नाल जुड़ी हुई है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तां एक अटपटी नहीं एक्चुअली सोहणी भी नहीं कह सकती टेस्टी कहूँगी इस चीज़ नूं ते बड़ी नवी जी है ट्राई जी करांगे आपां एक रेसिपी एंड दैट इज शिमला मिर्च दही वाली आय हाय हाय हाय हाय दही जमाई हुई है करे नाल शिमला मिर्च भी पई है कुछ नहीं सूझ रहा ना इन्हां दोवां दी चक के तुसी सब्जी बना देनी है और सब्जी बनानी है इन्नी खास बनेगी और सारे कहेंगे आज बनाया की सी है इन्ना स्वाद कितों रेसिपी लेके आई अरे जनाब FM रेनबो हैगा प्रोग्राम होम स्वीट होम चल रहा है सो देखो शिमला मिर्च और दही की सब्जी बनाने लिए आपां करना की है एक समान नहीं एक्चुअली लिस्ट तो थोड़ी जी लंबी है मसाले तो देखो अपने किचन दे विच पए होंदे सारे मसाले हुण मैं लाल मिर्च पाउडर करां कि अमचूर पाउडर की गल करां हल्दी लै लो धनिया पाउडर हो गया तेल हो गया जीरा अरे जीरा कैसे भूल सकते हैं जीरा जीरा जीरा नचूगा टपूगा पहले तेल दे विच लेकिन समान नोट कर लो होर की चाहिए सो मूंगफली के दाने जेकर है ना तो वह लै लें मतलब मेन इनग्रीडियंट की गल करा तो ये मूंगफली है ना बस उन्होंने लैना है कच्ची मूंगफली की गल कर रही हाँ मैं 50 ग्राम मूंगफली लैनी है शिमला मिर्च लै लैनी है 350 ग्राम

हम शिमला मिर्च ले लो, है ना, मतलब दो चार जनिया की सब्जी आराम नाल बन जानी है। और उस तो बाद अपना मेन इनग्रीडियंट जिहड़ा हैगा वह है जी दही। दही ले लेना आप 300 ग्राम, ठीक है। सो 300 ग्राम दही हो गया, 350 ग्राम शिमला मिर्च हो गई, और मूंगफली 50 ग्राम, बाकी तो छोटा मोटा मसाला है यार, घर दे विच पए होने हैं, जाके किचन च चेक कर लो, सारे मसाले है, और कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हां दे नाल आप बना देनी है सब्जी। फिलहाल भूख मेनू भी बहुत जोर वाली लग रही है, इंजॉय करते हैं गीत। उस तो बाद नोट करके रखो, समान कट के रखो अपना, ठीक है, दही, शिमला मिर्च ते मूंगफली दे दाने, बाकी सारे मसाले नॉर्मल ही हैं। चलो तड़का लगाने के आ रही हूँ मैं जी इस गीत तो बाद, स्टे ट्यून्ड।

हाँ तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। और अब्बा भी देखो कई बार सोचा च पै जाते हैं, ख्यालों च होंगे आ, और सामने किसी की देखो एक चेहरा ना साढ़े सामने आ जाता है, उन्होंने ख्यालों से ख्यालों से ही सोची जा रहे हैं और शख्स वो साढ़े सामने आ जाता, और जिदा का आप उसू अपने ख्यालों से सोच रहे होंगे ना, असल जिंदगी दे विच भी जो किसी नाल साड़ी मुलाकात होंगी है तो आप भी आई थिंक ये वाली लाइन शायद उसनों यही कहनी सी ना कि हाँ तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और हो सकता थोड़ी जिंदगी दे विच भी कोई ना कोई अजिहा शख्स जिहड़ा है जरूर होएगा जिदे लई तुसी ये लाइन कह रहे हो। और जो तुसी बार बार ये लाइन कहोगे तो सामने वाला पर्सन पता है की कहेगा, ये कहेगा सुनो फिर अगले गीत में।

नैनो से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ जो मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। अरे अरे अरे अरे, अग्गे ही तो देख रहे हैं हूँ। देखो जो पिछे रह गया ना, वो रह गया, चला गया। और कुछ यादा अजिहा हुंदिया ने जिन्हां नूं आपां याद ना ही करिए तां बेहतर है। और अगे चलिए कुछ सुनहरी यादा वल। और देखो अज जो असी क्रिएट कर रहे हैं, कल नूं उही साडी मैमरी साडी यादा दे विच ओ याद रहणगियां सानूं। सो अज दा दिन खास बनाओ, अगे चलो और देखो देखो देखो अगे की है। अगे अगला गाना है किशोर कुमार की आवाज़ च। स्टे ट्यून्ड।

सो विक्टोरिया नंबर 203 और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, किशोर कुमार की आवाज और देखा देखा देखा की देखा वेख तो आप बहुत कुछ रहे हैं जिंदगी दे और वाकई जिंदगी कदम कदम से सानू बहुत कुछ दिखा भी जाती है और नाल ही नाल सिखा भी जाती है और जदों आप सीखते रहने ना कुछ चीज़ा है ना तो अगे जावांगे तो हो सकता है कि आज सीखी हुई चीज़ जी है कल नू साडे काम आ जाए। इस करके लर्निंग वाला मूड जिहड़ा है ना वो जिंदगी दे विच हमेशा ऑन रहना चाहिए। लर्न तो फिलहाल मैं भी कर रही हूँ, नहीं लर्न कुछ नहीं कर रही, प्ले कर रही हूँ जी थोड़े लिए प्रोग्राम मेडी मेलोडीज़ का।

जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। कितना करे तुझे भी किसनु इतना प्यार, मतलब कल्पनाओं तू भी मतलब परे मैं गल करा है ना, इमेजिनेशन भी नहीं उहदे विच भी नहीं आता। ये जिहड़ा प्यार लफ्ज़ है ना, ये जिहड़ा शब्द है ना, वाकई हर एक दे लई ना प्यार दे जिहड़े मायने है ना वह अपने अपने आ। हुण आपां किसे नूं कह नहीं सकते प्यार करन दे लई, इह तां किसे नूं हो सकता है किसी चीज़ दे नाल। हुण सागर दी गल करां या फिर उस अंबर दी मैं गल करां, नेचर दी गल करां, तां उहदे नाल अपना वक्रा ही प्यार हुंदा। या फिर किसी होर मतलब कुछ भी किताबां दी गल करां है ना, कोई शायरी दी गल करां। सो प्यार करन लई दुनिया च बहुत सारियां चीज़ां ने, और मेरे ख्याल नाल अगली गीत है ना उहदे नाल भी प्यार तां वैसे सारयां नूं मना कर रहे हो वैसे प्यार करन नूं, पर ठीक है इस गीत नाल मैनूं तो बहुत प्यार है।

और चलते चलते देखो आकाशवाणी ने भी अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं और मैं तो ये दुआ कर दिया कि सिर्फ 90 क्यों, आने वाले 90,000 साल तक आकाशवाणी तो थोड़ा साथ जी हाँ इस तरह ही बनिया रहे। फिलहाल प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज तुसी अज मेरी यानी रिचा दे नाल कर रहे सी इंजॉय और अज दे दिन मैनू दियो जी इजाजत, मिलांगी फिर किस दिन होर। मैनू पता थोड़ा दिल तो नहीं कह रहा, मैनू टाटा बाय बाय करन दा पर जाना तो पएगा। सो जाना पएगा ताही तो फिर किस दिन होर मुलाकात होएगी, ते तक तक लई अपना ख्याल रखना है और जुड़े रहना है जी आकाशवाणी जलंधर दे नाल। स्टे ट्यून्ड विद FM रेनबो, दिल से दिल।

कहते हैं कि संगे मरमर से तराशा है तुझे, संगे मरमर से तराशा है खुदा ने तुझे, बाकी जो पत्थर बचा उससे मेरा दिल बना ली गया। सो तुसीं प्रोग्राम सुन रहे हो दिला शायर अपनी दोस्त ते होस्ट आर जे रिया दे नाल। सर ते साडे बहुत सारे दोस्त साडे नाल जुड़े हुए ने, बहुत ही सोहणियां सोहणियां कवितावां शेर शायरियां साडे नाल सांझियां कर रहे ने साडे व्हाट्सएप नंबर ते, जो कि हैगा है जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27। बलविंदर सराम पिंड मोरजंड सिखा हनुमागढ़ तो लिखते ने कि आंसू तुम्हारी आंखों में कभी ना आए, आंसू तुम्हारी आंखों में कभी ना आए, दर्द हो तुम्हें ना कोई ना कभी चोट आए, मेरे हिस्से में खुशियां ज़्यादा तो नहीं पर खुदा करे जो भी आए तुम्हारे तुम्हें मिल जाए। वाह जी वाह, बहुत ही सोहनी शायरी तुसीं सानूं भेजी है। तो राम स्वरूप अरोड़ा सुल्तानपुर लोधी तो लिखते ने कि वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी वो नफ़रत भी तुम्हारी थी, वो मोहब्बत भी तुम्हारी थी वो नफ़रत भी तुम्हारी थी, हम अपनी वफा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था और अदालत भी तुम्हारी थी। सो इदा ही जो तुम भी अपनी कवितावं अपनिया शेर अपनी शायरियाँ साढ़े नाल सांझियां करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो साढ़े व्हाट्सएप नंबर पर। एक बार फिर दस दिनी हूँ, जो कि हैगा जी 9855 10 10 27 9855 10 10 27। तो अगली गज़ल जो कि हैगी नीना ते रजिंद्र मेहता जी की आवाज़ में थोड़े लिए पेश कर रही हूँ।

लिखते हैं कि तुम अभी मेरी मोहब्बत से वाकिफ ही कहाँ हो, तुम अभी मेरी मोहब्बत से वाकिफ ही कहाँ हो, मैं खुद को बीवार दूँ तुम्हारा सदका उतारने के लिए। प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रही हूँ, दिल आज शायर है अपनी दोस्त ते होस्ट आरजे रिया दे नाल। ते गलबात इदा है कि गल्लां बातां बहुत सारियां हो रही ने, बहुत सारे दोस्त साढ़े नाल जुड़े हुए हैं, तो बहुत सोहने सोहने मैसेजेस, बहुत सोहनिया सोहनिया शायरियां, नज़मां, गज़लां साढ़े नाल सांझियां कर रहे हैं। साढ़े वट्सएप नंबर ते जो कि हैगा है जी 9855101027। ते इस माहौल, इस महफिल दे अंदर मैं सोचिया कि एक जॉन एलिया साहब की एक बहुत ही सोहनी कविता है थोड़े सारे नाल सांझी की जाए। सो जॉन एलिया साहब लिखते हैं कि आखिर की तड़प रहा है मेरी जान दे अंदर, आखिर की तड़प रहा है मेरी जान दे अंदर, कि वो इको शख्स तो नहीं सी जहान दे अंदर, मैं किन्नियां मौतां मरिया उस दे जान दे मगरों, तुसी भावें अज ही लै जाओ मैनू शमशान दे अंदर, कि मेरे दर्द नू देख के मेरे अपने भी तड़पते ने, कि मेरे दर्द नू देख के मेरे अपने भी तड़पते ने, पर मैं बोलन नहीं देंदा किसी नू उस दे खिलाफ उस दी शान दे अंदर, कि वह मैखाने च शराब पीन वाले हो जो नशा सी उस दी अखां दे जाम दे अंदर, मैं मन्नता मंगियां मत्थे टेके नहीं छड़िया कोई दरगाह गुरद्वारा मंदिर, कि वह एक बार आ जावे मैनू गल आ जावे, आ जावे भावें ख्वाब दे अंदर, मैं एक उस पल विच कट लवां उम्र सारी, मैं एक उस पल विच कट लवां उम्र सारी, फिर भावें फूक आयो दफना आयो मैनू कब्रिस्तान दे अंदर, कि आखिर की तड़प रहा है मेरी जान दे अंदर, वो इको शख्स तो नहीं सी ना जहान दे अंदर। सो ये तो मैं अपनी जिहड़ी मेरे दिल के बहुत करीब सी कविता तुहाडे सारे नाल सांझी कीती है, ते तुसीं भी अपने दिल दी जो तुहाडे दिल दे करीब है कविता ते जिहड़ी तुहानूं शायर बनाउण नूं मजबूर करदी है, तुसीं उह साडे नाल सांझियां कर सकदे हो। नंबर एक बार फिर तो दस देनी है, नंबर हैगा जी साडा 9855101027। ते इस सजी हुई महफिल विच होर चार चंद लगाउण दे लई पंकज उदास होरां दी एक बहुत ही प्यारी जी गज़ल तुहाडे लई पेश कर रही हां।

तुम सुनकर नहीं थकती, मैं बोलकर नहीं थकता, तुम सुनकर नहीं थकती। देखो कहने को आज भी कितने शब्द हैं, पर अफसोस तुम मुझे सुन नहीं सकती। छू लेने वाला वो खामोश दिल हो तुम, छू लेने वाला खामोश दिल हो तुम, जो हर धड़कन में अब भी बसता है। शायद इस जन्म में दूरी लिखी थी, पर अगले जन्म में तुम मेरी खामोशी सुनोगी और मैं तुम्हारे अनकहे एहसासों को। फिर शब्दों की ज़रूरत नहीं होगी, दिल ही दिल की हर बात समझ लेगा। बहुत ही सोहनी कविता तुसी साडे नाल सांझी कीती है। तो इस कविता ते जसप्रीत शर्मा होरां दी एक बहुत ही सोहनी गज़ल है जो मैं पेश कर रही हाँ। तो जिहड़े भी दोस्त अजे भी उड़ीक कर रहे ने कि यार वेटिंग फॉर द राइट टाइम इज़ नाउ, तुसी हुणे ही साडे वट्सएप नंबर 9855101027 ते साडे नाल अपनियां लिखियां होईयां या फिर किसी होर दियां लिखियां होईयां कवितावां, गज़लां, नज़मां, शेरो शायरियां सांझियां कर सकदे हो। बस इस गल का ध्यान रखियो कि जे तुसी किसी होर दी लिखी हुई साडे नाल सांझी कर रहे हो ते नाल उसदे जिहड़े उसदे जिन्हां ने वो लिखी है कविता, नज़म, गज़ल, तुसी उन्हां दा नाम जरूर लिखते हो। सो फिलहाल जसप्रीत शर्मा होरां दी आवाज़ विच बहुत ही प्यारी जी गज़ल तुहाडे लई पेश कर रही हां।

0: आयंते।
1: हर घर सूर्य घर।
2: उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, मेरे दिल तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं। मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र तो यशपाल धीमन ते उन्हां दे साथियां ने बहुत ही सोहना शेर साडे नाल सांझा कीता है ते होर वी साडे दोस्त जिहड़े साडे नाल अपनी कवितावां नज़मां गज़लां सांझियां करनियां चाहुंदे ने उह कर सकदे ने। ते इदां दी एक बहुत ही प्यारी कविता साडे नाल मनप्रीत जी जो कि अमृतसर तों ने उन्होंने सांझी कीती है। उह लिखदे ने कि तुम्हारा प्रेम सागर जैसा है, तुम्हारा प्रेम सागर जैसा है, ऊपर से बिल्कुल शांत और भीतर ना जाने कितनी आवाज़ें रखे हुए हैं। तुम्हारे साथ बैठूं तो लगता है कि मेरे अंदर की बेचैनियाँ धीरे धीरे अपनी गिरहें खोल रही हैं और तुम्हारी मौजूदगी एक छोटी सी लौ जैसी है, बहुत तेज़ नहीं, बस इतनी कि उसके रहते अंधेरा पूरा अंधेरा नहीं रहता। सो बहुत ही सोहनी कविता तुसीं साडे नाल सांझी कीती है ते असीं उडीक कर रहे हां अपने होर भी दोस्तां दी जो कि सानूं अपनी सोहनियां सोहनियां कवितावां नज़मां गज़लां साडियां नाल सांझियां कर सकदे ने। फिलहाल तुहाडे नाल मैं सांझी कर रही हां या तुहाडे लई पेश कर रही हां जगजीत सिंह होरां दी एक बहुत ही प्यारी जी गज़ल

0: जन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 और प्रोग्राम शुरू हो रहा है रेडियो डॉक्टर। स्वागत अभिनंदन सभी साथियों का, कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त सीमा आर्य का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो डॉक्टर में आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय और इस विषय के साथ हम हाजिर हैं प्रोग्राम में, और आज बात करेंगे तेल के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव। और इस विषय के बारे में आपके सवालों के जवाब और समस्याओं का समाधान देने के लिए स्टूडियो में हमारे पास आज एक बहुत अच्छा सा, कहना चाहिए, पैनल है, जिसमें हमारे विशेषज्ञ हैं मोना दीपा तालुकदार, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर

0: डायरेक्टर एंड हेड इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और साथ में हैं रेडियो डॉक्टर की प्रोड्यूसर शालिनी मित्तल। और रेडियो के जरिए जो है आप तक हमारे एक्सपर्ट्स घर पहुंच रहे हैं आपके। आप सभी अपनी बात रखिए, विशेषज्ञों से पाइए जानकारी। और अब शालिनी जी आप बताइए प्रोग्राम को तो किस सीमा तरह आगे बढ़ाएं।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा इंट्रोडक्शन के लिए, और सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं हमारे आज के इस विशेष अंक में, रेडियो डॉक्टर के विशेष अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जैसे सीमा ने बताया, हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और हम कार्यक्रम का आरंभ कर चुके हैं। पर सबसे पहले जैसा विषय सीमा ने बताया, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हेल्थ से सीधे सीधे जुड़ता है, और ये कार्यक्रम जो है रेडियो डॉक्टर आपकी हेल्थ के लिए ही है। एक्सेस ऑयल इनटेक हेल्थ रिस्क, तेल के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले नुकसान। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, हर आयु वर्ग यहाँ तक कि युवा भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है क्योंकि मोटापे से मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि दो बातों पर जरूर ध्यान दें, हर दिन थोड़ा समय निकालें और व्यायाम करें, चलने से लेकर वर्कआउट करने तक जो भी संभव हो वो करें। दूसरा, अपने आहार पर ध्यान दें, अपने तेल में अस्वास्थ्यकर वसा और तेल को कम करें। हर महीने हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले तेल की मात्रा को 10% कम करें। ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी सेहत में बड़ा बदलाव आ सकता है। ये तो वो बात है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने की, और इस कार्यक्रम के माध्यम से इसको विस्तार हम देना चाहते हैं आज के रेडियो डॉक्टर में। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है और इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो स्वागत करेंगे मोनी दीपा जी आपका। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल हैं FSAI में। तो और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: तो सबसे पहले कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री ने की कि हमें ऑयल इनटेक रिड्यूस करना चाहिए 10%। तो मोनी दीपा जी आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले जान लेते हैं कितना ऑयल जरूरी है, और फिर डॉक्टर संजय आप भी जरूर बताएं इस विषय पर।
3: जी, ये बहुत ही रेलिवेंट सवाल आपने पूछा है क्योंकि ICMR NIN ने बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस इशू किए हैं जिसमें एक एडल्ट मेल को पूरे दिन में 30 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे और एक फीमेल के लिए 20 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे का मानक निर्धारित किया गया है। तो इसके हिसाब से ये हमारी विजिबल फैट की लिमिट हमारे हमें ICMR के गाइडलाइंस में दिशा निर्देश किया गया है। तो यदि हम इसको महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं और बड़े ही आसानी से जो प्रधानमंत्री जी ने हमें 10% रिडक्शन का टारगेट दिया है वो हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 30 ग्राम पर डे को 30 दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, एक महीने का हम कोटा 900 ml या रफली 1 liter तक निकाल सकते हैं, उसका 10% रिडक्शन करके हम 900 ml से 800 ml का टारगेट रख सकते हैं, और एक पूरा परिवार इसको 4 से गुना करके 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देगा तो 3600 के करीब आएगा, जिसको हम लोअर फिगर में अगर रखेंगे तो 3.5 liters ऑफ ऑयल पर फैमिली ऑफ मेंबर ऑफ 4 पीपल का अगर हम टारगेट रखें तो डेफिनेटली हम 10% रिडक्शन तक जा सकते हैं, और इस तरह से ही हम तेल का डेली हिसाब किताब और मंथली हिसाब किताब मैनेज कर सकते हैं।
1: जी, तो सिर्फ हमें अपने पैसे का हिसाब किताब नहीं करना है, हमें इनटेक ऑफ ऑयल का भी हिसाब किताब बिल्कुल तरीके से करना है। डॉक्टर संजय कुमार, जैसा मैंने कहा, हम जानना चाहेंगे, मोनी दीपा जी ने बताया कि 10% रिडक्शन किया जा सकता है, पर यह सवाल ये उठता है कि क्यों कम करना है, क्या हेल्थ जो रिस्क हो सकते हैं अगर बिना कैलकुलेशन के ऑयल इंटेक या फैट इंटेक किया जाए।
2: जी बिल्कुल जरूरी है, ये हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जो हमारा जो युवा पीढ़ी है आजकल, पहले हम लोग देखते थे जो ओबेसिटी जो थी वो पहले मिडिल एज या उससे आगे में होता था, लेकिन आजकल देखते हैं कि यंगस्टर्स भी इसके प्रभावित में आ रहे हैं। एडोलेसेंट एज ग्रुप जो है, मिडिल एज ग्रुप तो और ज़्यादा इसमें, और सेंट्रल ओबेसिटी हम लोग आजकल देख रहे हैं जो कि जो विसरल फैट होता है, जो हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ जो फैट होता है जो कि काफ़ी घातक होता है एज कम्पेयर टू दी जो वेस्टर्न पॉपुलेशन। हम देखते हैं कि वो उनका फैट हर जगह पूरे लिम्स में और हर जगह पूरे होता है, तो ये जो विसरल फैट है एज कम्पेयर टू सबक्यूटेनियस फैट यानी स्किन के नीचे जो फैट होता है, जो विसरल फैट जो एशियन पॉपुलेशन

0: ज्यादा देखा जाता है, ये काफी घातक होता है। उसमें क्या होता है, आपका जो सेंट्रल ओबेसिटी होता है, पेट मोटा हो जाता है लेकिन हाथ पैर पतले रहते हैं आपके, तो ये जो फैट है जो आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ है, ये काफ़ी घातक होता है और ये आगे चल के आपको हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक या पाँव में जो ध्वनियाँ हैं उसमें रुकावट आ जाना, आँखों के जो ब्लड सप्लाई है उसमें रुकावट आ जाना, अचानक से ब्लाइंड हो जाना, और इसके साथ साथ आपको कई सारी जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हो सकता है। और फिर ये आपको राइज देता है कि ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर होने के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल हाई होने के चांसेस, साथ में ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि कमर की, घुटनों की प्रॉब्लम, ये बहुत सारी अन्य बीमारी, इसके साथ तो कैंसर के रिस्क भी बढ़ जाता है काफी इसमें।
1: जी जी, तो बिल्कुल सही। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमें फिट रहना है तो हमें ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक गीत सुन रहे हैं और लौट के आते हैं, आप सभी के प्रश्नों को शामिल करेंगे।

0: आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं, तेल के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव के बारे में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार और मोना दीपा तालुकदार जी।
1: और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो, हाँ मैम नमस्कार।
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं योगेश मौर्या बोल रहा हूँ मैडम, गोरखपुर से।
1: जी आप बहुत बहुत स्वागत है, आप प्रश्न करें, क्या पूछना चाहते हैं?
2: मैडम मेरे दो सवाल है, ये कुछ ऐसे 9 ml मैडम ने बोला है 900 ml एक आदमी को तेल खाना चाहिए
1: महीने में।
2: हाँ, इससे कम खाते हैं तो क्या नुकसान है? और एक सिर्फ सरसों का तेल ही हम सिर्फ यूज करते हैं तो उससे क्या फायदा क्या नुकसान है?
1: जी आपके प्रश्न हो गए, मोनी दीपा जी सुन रही हैं, बताए मैम क्या कहना चाहेंगे इनको?
3: नहीं, यदि आप इससे कम ऑयल में अपना सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे सभी खाद्य पदार्थों में इनविजिबल फैट, इनहेरेंट फैट रहता ही है। ऑयल का या फैट का जो हम विजिबल कंजम्पशन करते हैं वो बेसिकली हम एसेंशियल फैटी एसिड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करते हैं। तो यदि आप 900 ml कोई अपर लिमिट या लोअर लिमिट नहीं है, इससे कम पे भी आपका हो जाता है तो द लेस द बेटर। और दूसरा सवाल आपका था सरसों के तेल को लेके।
1: जी तो एक ऐसा ही मिलता जुलता आया है मैसेज भी, अमित टंडन जी ने मेरठ से लिखा है कि क्या सरसों का तेल नुकसान करता है, हम सामने का निकाला हुआ तेल लाते हैं, तो कोई भी तेल? मेरा ये प्रश्न है जो दोनों को मैं जोड़ के पूछना चाहूंगी आपसे कि तेल को हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा तेल हमें खाना चाहिए और क्या देखें उसको खरीदते वक्त, ये थोड़ा सा बताएं।
3: जी किसी भी तेल का एक फैटी एसिड प्रोफाइल होता है, जो सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का रेशियो होता है, जिसको हम सैचुरेटेड फैट इज टू मूफा इज टू पूफा बोलते हैं। इसका एक रेशियो वेल डिफाइंड है, 1:1:5:1। इसका मतलब है यदि आप 1 ग्राम सैचुरेटेड फैट है आपके उस तेल में तो उसमें 1.5 ग्राम मूफा एक आइडियल रेशियो है और उसी प्रकार से पूफा 1 ग्राम होना चाहिए। तो आप जब भी कोई तेल खरीदते हैं आप उसका फैटी एसिड प्रोफाइल चेक करें। ये प्रोफाइल आपको गूगल साइट्स पे या ICMR NIN के साइट्स पे आप इजीली इस तरह के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चाहे आप सरसों का तेल लें, राइस ब्रैन ऑयल लें, सनफ्लावर तेल लें या फ्लैक्सीड ऑयल लें, आप उसका प्रोफाइल चेक करिए। यदि उसमें सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोफाइल इसके नियर बाय सिमिलर प्रोफाइल मिलता है तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी तेल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल करें, क्योंकि कोई भी तेल अपने आप में कंप्लीट फैटी एसिड प्रोफाइल नहीं देता है। तो ऑलवेज गो फॉर ब्लेंडिंग ऑफ ऑयल्स एंड रोटेशन ऑफ ऑयल्स इन अ मंथ।
1: जी और ये लगभग ऐसा ही प्रश्न श्याम मित्तल जी ने पूछा था रोहिणी से कि हमें क्या कंटेंट्स देखने चाहिए ऑयल कंटेनर में बिफोर परचेजिंग, तो काफी कुछ हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो।
4: हेलो
1: जी।
4: हाँ मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ, बीपी सिंह बोल रहा हूँ।
1: जी बीपी सिंह जी बताएं।
4: हाँ मेरा आज कोई प्रश्न नहीं है आपसे, ये जो आपने टेक्निकल एक्सपर्ट बना आज इनवाइट किया इनको, उनसे मेरा एक सुझाव है, अगर इससे किसी तरीके से गौर किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। जो तेल तो हम लोग पहले से ही खाते हैं, इससे ओबीसी का सवाल नहीं बढ़ रहा है। जो आजकल जो प्रैक्टिकल जो ये जो वेस्टर्न जो फूड आ रहा है, जो डब्बाबंद चीजें ज्यादातर आती हैं, उनमें कोई ऐसा मापदंड नहीं है जो कि इसकी गुणवत्ता अच्छी होगी। इन चीजों के सेवन करने से तो ओबीसी की प्रॉब्लम हमारे देश में ज्यादा बढ़ रही है। थैंक यू मैडम।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का एक मैसेज भी आ गया है सामने, दिख रहा है मुझे, अंकित सिंह ने दिल्ली से लिखा है कि पूरे दिन में एक व्यक्ति को कितना ट्रांस फैट अलाउड है, तो कहीं ना कहीं डिब्बा बंद ट्रांस फैट, पॉली सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये जो सब हम सुनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और डॉक्टर संजय से भी मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब जब हम अनसैचुरेटेड, पॉली सैचुरेटेड, ये सारी चीजें, जो ट्रांस फैट, कितना नुकसानदायक होता है ये हमारे हृदय के लिए और बाकी ऑर्गन्स के लिए?
5: देखिए इसमें अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, खास करके जो ट्रांस फैट है या सैचुरेटेड फैट्स है, तो ये नुकसान

0: नुकसानदेह होता है। और वैसे भी अगर आप कोई भी तेल ज़्यादा मात्रा में, इवन अगर आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं फॉर दैट मैटर, क्योंकि हमारे बॉडी जो है कार्बोहाइड्रेट्स को भी असिमुलेट करके वो फैट में स्टोरेज फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो खास करके जैसे अभी वीपी सिंह जी ने बताया कि डब्बा बंद खाना जो है हमारे पास, और जो आजकल फास्ट फूड का जो सेवन ज़्यादा बढ़ गया है, आप देखेंगे बहुत फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जिसमें काफ़ी डीप फ्राई चीज़ें मिलती हैं या नमकीन चीज़ें, या फिर जिसमें ट्रांस फैट वाली जो आइटम्स होते हैं, जिसको ऐसा तेल जो बार बार यूज़ किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं या अनसैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं, वो भी आपके ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक तो आपने ये पूछा कि भाई टोटल इंटेक कितना होना चाहिए ट्रांस फैट का, तो WHO के हिसाब से 2.2 ग्राम होना चाहिए आपका 2000 किलो कैलोरीज के हिसाब से, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि एक तो इंटेक ऑफ ऑयल ज़्यादा होता जा रहा है, साथ में इनएक्टिविटी जो है हमारी बढ़ते जा रही है। बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा समय बिता रहे हैं रेदर देन कि बाहर खेलते कूदते, जो पहले हम लोग देखा करते थे। आजकल बच्चों को बाहर धक्के मार के भेजा जाता है, पहले धक्के मार के अंदर किया जाता
1: था। बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब आपने। और यही माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि दो बातें हैं, सिर्फ अकेली नहीं, एक से नहीं काम चलेगा, बैलेंस फूड या ऑयल इनटेक कम करना है, लेकिन साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज पर भी उन्होंने जोर दिया है। एक कॉलर को ले लेते हैं और उसके बाद आगे बात बढ़ाएंगे। हेलो
2: हेलो
1: जी, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में।
2: सीमा आर्या जी को और शालिनी मित्तल जी को हाथ जोड़कर नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: दोनों डॉक्टर्स को मेरा सादर प्रणाम।
0: जी नमस्कार।
2: और रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से। मेरे दो सवाल हैं। ज्यादा तेल लेने से हमारे बॉडी के किस किस पार्ट पे सबसे ज्यादा असर होता है, और हमारे पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं, उसमें प्रोसेस ऑयल भी होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ दो दो साल तीन तीन साल होती है, वो कितना नुकसानदायक है। नंबर टू, सीजन के हिसाब से भी ऑयल इनटेक लेना चाहिए या कि एज यूजुअल जो हम ले रहे हैं वो ले, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब बताएं, ज्यादा तेल और जो इन्होंने बोला कि प्रोसेस्ड ऑयल, ये सारी चीजों का कैसे हिसाब रखें?
0: हाँ देखिए, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन ये किया है कि भाई कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं इससे। तो देखिए, इसमें जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वो पहले उसको डाइजेशन होता है इंटेस्टिन में, हमारे जो अतरी होती हैं उसमें, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर ये सारा का सारा जो एब्जॉर्प्शन जो ब्लड होता है ये लिवर में जाता है, वहाँ जाके इसमें फिर इसका चेंज होता है, लिवर में इसकी पैकिंग होती है या इसको स्टोरेज होता है। तो सबसे पहला ऑर्गन जो इफेक्ट होता है वो लिवर है, उसके बाद ही सारे ऑर्गन्स इसके धीरे धीरे, अगर आप ज़्यादा मात्रा में फैट ले रहे हैं, ऑयल ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं या ट्रांस फैट्स ले रहे हैं, और एक्टिविटी भी आपका कम है, तो ये धीरे धीरे आपका बाकी ऑर्गन्स में भी इन्वॉल्व होने लग जाता है, और पूरे बॉडी का ये जो है ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स के जो जो उसकी लाइनिंग है उसमें वो चिपकने लग जाता है, और कभी कभी वो रप्चर भी हो जाता है, वो लाइनिंग में रप्चर हो जाता है, वहाँ एकदम से वो वहाँ पे क्लॉट जम जाता है। ऐसे कंडीशन
1: सबसे पहला इंडिकेशन फैटी लिवर ही होगा डॉक्टर साहब?
0: हाँ जी, सबसे पहले यही होता है कि फैटी, इसमें भी दो तरह के हम लोग फैटी लिवर देखते हैं, जिसमें कि फैट आपके लिवर में है लेकिन वो डैमेज नहीं कर रहा है लिवर को, तो उसमें हम लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं ब्लड में, तो उसमें देखते हैं अगर हम उसमें जो लिवर एंजाइम्स का जो मात्रा है वो 100 से ऊपर है या 100 से नीचे है, वैसे 50 तक नॉर्मल लेते हैं, तो अगर 100 से ऊपर है तो फिर हम उसमें इंटरवेंशन करते हैं, अदरवाइज हम उनको क्लोज फॉलोअप में रखते हैं, और अगर 50 से नॉर्मल रेंज में है तो भी हम उनको एडवाइस करते हैं कि इसको आप फॉलोअप में रहिए और इसको कोशिश करिए कि अपना वेट और अपना फैट इंटेक थोड़ा सा कम करें।
1: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करते हैं अगर फैटी लिवर के उसमें थोड़ा सा इंडिकेशन आता है तो?
0: एग्जैक्टली, आजकल कई ऐसे एंड स्टेज लिवर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो कि लिवर पूरी तरह खत्म हो गया, और जो इनफैक्ट वुमेन में भी ऐसा हो रहा है कि क्योंकि मैक्सिमम केसेस तो हमारे अल्कोहल लिवर डिजीज के आते हैं, लेकिन ऐसे वुमेन्स में भी आ रहा है कि जो अल्कोहल नहीं लेती, या मेल भी है जो कभी अल्कोहल नहीं लिया लेकिन उनको भी एंड स्टेज लिवर डिजीज हो गया, लिवर पूरा, तो उस केसेस में ज्यादातर ये देखा गया है कि उनको कहीं ना कहीं फैटी लिवर रहा होगा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया या उनको

0: कभी ऐसा अल्ट्रासाउंड या LFT नहीं कराया, उससे उनको डिटेक्ट नहीं हुआ और वो सीधा सीधा धीरे धीरे धीरे धीरे वो लिवर को डैमेज करता करता वो एंड स्टेज में लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो गया।
1: मोनी दीपा जी, बहुत सारे हमारे श्रोता मैसेज के माध्यम से बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं, धीरे धीरे करके शामिल कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑयल सही है, और जैसे चट्टा जी मैंने भी पूछा क्या सीजन के हिसाब से क्या ऑयल चेंज करना चाहिए। आपने ये तो बताया कि वी शुड मिक्स ऑयल, कुछ चेंज करते रहना चाहिए, बट सीजन से भी चेंज करना चाहिए क्या?
2: सीजन का इतना इसमें महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि यदि हम रोटेशन में ही ऑयल ले रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हमें बेसिकली फैटी एसिड प्रोफाइल देखना है तेल का, जो सीजनल वेरिएशन का फैक्टर उसमें नहीं अप्लाई होता। तो तेल अगर आप चेंज करते रहेंगे तो दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल द एसेंशियल फैटी एसिड्स विच शुड कम थ्रू अ डाइट। तो सीजनल वेरिएशन को हम इतना मायने नहीं देते, परंतु ऑयल को चेंज करना और क्वांटिटी को मॉडरेशन में रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि आप घर पे भी जब तेल इस्तेमाल करें उसकी रिपीटेड फ्राइंग ना करें, उसको हाई टेम्परेचर पर फ्राई करके ओवर यूज़ ना करें। रेस्टोरेंट्स, बाहर जाके भी जब आप खाना खाएं तो हमेशा देखें कि जो किस प्रकार का तेल, जो फूड आउटलेट्स, जो ओपन वेंडर यूज़ कर रहा है उसमें भी आप आँखों से खुली जाँच करके भी आप पता लगा सकते हैं कि तेल कितना पुराना हो गया है। पुराना तेल बहुत गाढ़ा होता है, रंग भी उसका बहुत गहरा काले रंग का होता है। तो इस तरह की चीज़ों का हम विजुअल इंस्पेक्शन करके भी चेक कर सकते हैं, और ऑयल की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, ऑयल की क्वांटिटी को मॉडरेशन में रखें, सीजनल वेरिएशन का इतना महत्व नहीं रहेगा।
1: जी जी, एक और हमारे कॉलर हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो
3: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार,
3: ये किशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ।
1: जी अग्रवाल साहब,
3: मेरे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है माँ के दूध की बजाय आजकल डॉक्टर ही कहते हैं कि पाउडर का दूध जो है वो दो डब्बे का दूध दो, और डब्बे का दूध जब बच्चा पीता है तो बहुत मोटा नजर आता है, तो क्या वो आगे चल के वो मोटा बन सकता है, नुकसान देता है, क्या उसमें शुगर भी ज्यादा होती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो आजकल चलन है लड़कियों का जो मोमोज और ये पैटीज और ये चाउमीन जो खाते हैं मैदा की चीजें, क्या उससे भी मोटापा बढ़ता है? कहते हैं कि भाई एक केला में सबसे ज्यादा विटामिन होता है, लेकिन बच्चे केला इसलिए नहीं खाते हैं कि उसका वजन बढ़ जाएगा। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो आदमी बच्चे मोटे हो जाते हैं, लड़की या लड़के आजकल नौजवान, वो अपना वेट लॉस करते हैं, क्या वेट लॉस करने से जो उनकी झुर्रियां पड़ जाती हैं या उनकी खाल लटक जाती है वो कितनी हानिकारक है, बच्चे बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए डॉक्टर साहब। बहुत सारी चीजें इन्होंने पूछी हैं, छोटे बच्चे से शुरू करके वेट लॉस पे बात की है, फास्ट फूड पे बात की है। तो पाउडर का जो दूध बच्चों को दिया जाता है क्या हार्मफुल होता है, सबसे पहला जो उनका प्रश्न था।
0: हाँ जी बिल्कुल होता है, जहां तक होता है हो सके तो जो बेस्ट होता है बच्चे के लिए वो मदर का मिल्क होता है, क्योंकि उसमें ना तो आपके जो मिल्क की जो सारी जो बेनिफिट्स होते हैं वो होते हैं, इसके साथ साथ आपको ऐसे एंटीबॉडीज भी होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि जो डब्बे का मिल्क होता है उससे ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एंटीजेनिसिटी के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो जो थोड़ा सा दिक्कत होता है, स्पेशली जब आप न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू प्रोटीन है बच्चे के लिए, तो ये चीज़ें काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकती हैं बच्चे के लिए। और दूसरा इन्होंने बोला कि चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन,
1: हाँ
0: तो ये हम देखा जाएगा कि हमारे इंडियन डाइट में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रांसफैट, जैसे डीप फ्राई चीज़ें हैं, छोले भटूरे हो गया या फिर प्रोसेस्ड फूड हो गया, समोसे हो गया, आजकल हम लोग उस पर जैसे पूड़ियाँ हो गई, या जितने भी आप जो डीप फ्राई वाली चीज़ें हमारे इंडियन डाइट में भी हैं वो भी नुकसानदेह है। और जो प्रोसेस्ड फूड हो गया जैसे नमकीन हो गए या कुछ भी चीज़ एक्सेस में, चाहे वो शुगर हो चाहे वो नमकीन नमक ज्यादा हो या ऑयल ज्यादा हो, वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह करता है, तो ये भी चीज है। और जो झुरियां की बात की इन्होंने, देखिए मेरे ख्याल से वेट लॉस करने का सबसे जो फायदा है कि आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, आप बहुत फिट नजर आते हैं, और झुरियां धीरे धीरे वो अपने जो स्किन लूजनिंग होती है वो खास करके तब होता है जब आप एक्यूटली यानी बहुत जल्दी आप वेट लॉस करते हैं। अगर आप धीरे धीरे करें, और वेट लॉस जल्दी भी करना भी नहीं चाहिए,
1: क्रैश डाइटिंग पे चले जाते हैं
0: बिल्कुल, तो उसके लिए आप धीरे धीरे वेट लॉस करें तो ये झुरियां भी नहीं पड़ती।
1: जी जी, हमारे एक और कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो
4: हेलो
1: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं?

0: नमस्कार शालिनी मैडम,
1: जी
0: मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी यशपाल जी, आप अपना प्रश्न करें, हमारे विशेषज्ञ सुन रहे हैं।
0: आज आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है
1: और
0: थोड़ा डिफरेंट वे में लिया। आज पैनल के साथ प्रोग्राम चल रहा है
1: जी। थैंक यू,
0: रियली गुड इनिशिएटिव,
1: थैंक यू सो मच जी। आप कुछ प्रश्न करना चाहेंगे आज के विषय पर?
0: प्रश्न मेरा ये है, एक तो दो तीन आजकल मार्केट में आते हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ये अच्छे ऑयल माने जाते हैं। और फिर दूसरा ऑलिव ऑयल भी, ये जो है इंडियन कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल बिक रहा है, वो कितना करेक्ट है? और तीसरा ये भी बोलते हैं कि ऑयल जो होता है वो सीड ऑयल से बेटर है नट्स ऑयल वाला, मतलब सीड्स जितने भी सनफ्लावर है या राइस ब्रान है ये इतने अच्छे ऑयल नहीं है। मस्टर्ड ऑयल और देसी घी और कोकोनट ऑयल ये बेस्ट है। तो थोड़ा सा ये क्वेरी थी, प्लीज क्लियर करो
1: जी। जी बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने रखा है यशपाल जी। और मोनी दीपा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैम प्लीज बताएं इसके बारे में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ऑर्गेनिकल, बहुत सारी चीजें हम रोज सुन रहे हैं मार्केट में, इसका जरूर हमें पता लगना चाहिए कि क्या फैक्ट क्या है, बताएं प्लीज
2: जी। ऑयल प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फिल्ट्रेशन, और उसके बाद इसकी ब्लीचिंग की जाती है। बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है ऑयल प्रोसेसिंग में, जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके दौरान ऑयल के बहुत सारे बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स इफेक्ट होते हैं। तो उस सेंस में यदि हम कोल्ड प्रेस ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि उसको बहुत हाई टेम्परेचर्स पे नहीं प्रोसेस किया जाता, तो बहुत सारे बायो एक्टिव कॉम्पाउंड्स जो ऑयल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो रिटेन्ड रहते हैं। तो डेफिनेटली कोल्ड प्रेस ऑयल्स हेल्दियर रहेंगे किसी भी रिफाइंड प्रोसेस्ड ऑयल से। और जहाँ तक आपने बताया ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का निश्चय ही फैटी एसिड प्रोफाइल बहुत बैलेंस्ड है, परंतु उस तरह का फैटी एसिड प्रोफाइल आपको किसी दूसरे चीपर वर्जन में भी मिल सकता है, क्योंकि ऑलिव ऑयल अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली।
1: जैसे उनका प्रश्न था क्या इंडियन कुकिंग के लिए ठीक है ऑलिव ऑयल?
2: देखिए, इंडियन कुकिंग से हमारा मतलब है कि हम हाई टेम्परेचर पे जो फ्राइंग कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट कम माना जाता है। तो ठीक है, हम सॉर्टी प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली फ्राइंग करेंगे तो वो लो टेम्परेचर पे बहुत स्मोकी हो जाता है और वो लूज कर जाता है अपना, अपने उसमें बहुत सारे चेंजेस, केमिकल चेंजेस जो हीटिंग के होते हैं वो पहले शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट काफी हाई रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर तक वो मेंटेन करके रख सकता है अपना प्रोफाइल, उसमें इतने रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव चेंजेस नहीं होंगे। वही ऑक्सीडेटिव चेंजेस ऑलिव ऑयल में लो टेम्परेचर्स पे हो सकते हैं। तो फ्राइंग के लिए आप इस्तेमाल ना करें, परंतु बाकी प्रोसेसेस में, सैलड्स में और बाकी जिसमें हाई टेम्परेचर कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल ठीक ऑप्शन है।
1: बहुत सारे प्रश्न हमारे पास हैं, सीमा मुझे बता रही है कि बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, पर एक सॉन्ग ब्रेक हमें यहाँ पर लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी कंटिन्यूस बोल रहे हैं, लेकिन श्रोताओं से भी हम गुजारिश जरूर करते चल रहे हैं कि हमें लिखते रहें, हमें फोन करते रहें, क्योंकि जैसे ही जैसे समय मिलेगा हम आपको जरूर शामिल करेंगे, आपके प्रश्न को जरूर लेंगे। एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
3: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
4: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
3: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
4: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
5: भूख लगी जोरों की भूख लगी।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आप हैं और हमने ये गीत जो आपको सुनाया वो इसलिए नहीं सुनाया कि आप खूब सारा चिकन खा लें या आप बिना सोचे समझे बहुत कुछ खा लें, सिर्फ ये ध्यान देने के लिए गीत बजाया गया कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये तो एक एंटरटेनमेंट के लिए बजाया गया था, लेकिन आज हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि बहुत नाप तोल कर हमें अपने ऑयल को यूज़ करना है अगर स्वस्थ रहना है। और इसी तरफ इशारा किया है प्रधानमंत्री जी ने, सभी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से बढ़ता मोटापा हमारे देश के लिए आगे चलकर किस तरह नुकसानदेह हो रहा है। क्योंकि बात यह भी हो रही है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी शुरू में कहा, डॉक्टर संजय ने, कि सिर्फ मिडिल एज नहीं, इवन यंगस्टर्स, इवन बच्चे, वो भी इसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मैसेजेस बहुत आ चुके हैं। सीमा, लेना चाहोगे एक मैसेज?
2: बिल्कुल, एक मैसेज तो ये अश्विनी जी का दिल्ली से आया है और ये इन्होंने कि किस तरह से खाना बनाया जाए, खाना बनाने के लिए भी कि तेल का किस तरह यूज़ किया जाए वो भी ये जानना चाह रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो। और एक ये जो हमारे साथी हैं वो गुड फैट्स और बैड फैट्स के बारे में भी जानना चाह रहे हैं, ये हैं संतोष दास, तो ये आप बताएं प्लीज़।
3: जी, सिंपल भाषा में आम लोगों के लिए फैट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गुड फैट्स और बैड फैट्स। गुड फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स आते हैं जो हम अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते और उनको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है। और बैड फैट्स एक वो कैटेगरी है जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं और इसमें मेन

0: लिस्ट में रहते हैं ट्रांस फैटी एसिड्स, उसमें भी इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स को हम खासकर बहुत ही ब्लैकलिस्ट करते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल है बैड फैट्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये न तो सिर्फ एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स या कोलेस्ट्रोल के लेवल को बढ़ाता है, बट ये एक प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रोल जो एचडीएल होता है उसकी मात्रा को भी साथ में कम करता जाता है। तो बैड फैट्स की कैटेगरी में सैचुरेटेड फैट्स और इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स आते हैं। सैचुरेटेड फैट हम ज्यादातर उस तरह के प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो जो एनिमल फैट से आते हैं, जैसे कि घी हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह के अंडा है, इस तरह के प्रोडक्ट्स में सैचुरेटेड फैट रहता है। और गुड फैट्स में एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आते हैं, और ये बड़ी आसानी से, ये एसेंशियल फैटी एसिड जो डाइट के थ्रू लेना बहुत ज़रूरी है, हमें बड़ी ही आसानी से, जैसे पहले प्रश्न में भी बोला गया था, नट्स एंड सीड्स एक वो कैटेगरी है जिससे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो यदि हम एलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश ऑयल यूज करते हैं, लेते हैं, तो हमें ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इसी तरह से ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के लिए वेजिटेबल ऑयल्स एक सोर्स है, सोयाबीन का तेल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सभी प्रकार के एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल्स में ओमेगा 6 की भी मात्रा पाई जाती है। दूसरा प्रश्न इनका
1: कि किस तरह से खाना बनाया जाए, वो तरीका भी जिससे कि कम से कम कंज्यूम करें हम ऑयल।
0: बिल्कुल, हम बहुत जुडिशियसली कुकिंग प्रोसेस को हम यदि जुडिशियसली सिलेक्ट करें, यदि हम बेकिंग, रोस्टिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग जैसे प्रोसेस को इस्तेमाल करें, हर चीज़ को खाली सौते करके या फ्राई करके ना बनाएं, आजकल एयर फ्रायर्स अवेलेबल हैं, तो यदि हम अल्टरनेटिव मेथड ऑफ कुकिंग अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम ऑयल की इस कंजम्पशन को कम कर सकते हैं। हम अगर पूरे दिन में 20 ग्राम तेल प्रति व्यक्ति लेना चाहते हैं और उस 20 ग्राम तेल की मात्रा को आप पहले ही अपनी कटोरी में या किसी बर्तन में पहले ही निकाल के रख लीजिए और पूरे दिन में आप उसी तेल को ही कंज्यूम करिए, वो तेल एक बार कंज्यूम हो गया पूरे दिन के 3 मील्स में, तो आप और पैंट्री से एक्सेस ऑयल मत निकालिए और अल्टरनेटिव गुड कुकिंग प्रैक्टिसेस यूज करिए।
2: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो।
3: हेलो
2: जी।
3: जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
3: मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा दिल्ली से ही।
2: हाँ जी राजेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, आप प्रश्न करें।
3: जी मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हिंदुस्तान में चूंकि हम विदेशी तेल और हिंदुस्तानी तेल भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान में कितने किस्म के तेल पाए जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा तेल होता है और सबसे ज्यादा बेकार तेल कौन सा होता है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम परौठे तो जो है घी में बनाते हैं, पर हम पूरियां और जो है भटूरे तेल में बनाते हैं, तो क्या हमें परौठे भी तेल में ही बनाने चाहिए?
2: जी, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, हमारे पास समय की सीमा है, हम सबको ले नहीं पाएंगे, लेकिन आज के कार्यक्रम से संबंधित जो है वो प्रश्न जरूर हम ले लेते हैं कि इन्होंने बोला घी में हम पराठे बनाते हैं पर पूरियां हम तेल में तलते हैं, तो क्या सारी चीजें, ये भी बहुत आपने जैसा शुरू में बताया कि पर्सनल चॉइस हो सकती है, बट आपको लिमिटेड टू दैट क्वांटिटी रखना चाहिए, और कितने किस्म के हैं ये भी हमने अभी बात की है, काफी विस्तार से बात की है। एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।

0: तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे मैसेजेस आ चुके हैं। सीमा प्लीज मैसेज ले लीजिए।
1: प्रफुल्ल कुमार जी का ये मैसेज एम्स से आया है और ये लिख रहे हैं कि क्या कोई तरीका है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो तेल हम खाने जा रहे हैं वो पहले से ठीक है या नहीं।
0: जी तो मुनिदीपा जी, हम जरूर चाहेंगे कि तेल का, जैसे FSSAI में आप काम करती हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका क्या वर्किंग, क्या किस लिए इसको करा जा रहा है, क्या आपका प्रोटोकॉल रहता है, किस तरह से टेस्टिंग की जाती है तेल की क्वालिटी की, ये बताएं।
2: जी, FSSAI का मैंडेट है साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स बनाना सभी फूड प्रोडक्ट्स के लिए, ताकि जो हम फूड बाजार में मिल रहा है और जो एक कंज्यूमर खा रहा है वो सेफ, न्यूट्रिशियस और होलसम हो। तो इस मैंडेट को ध्यान में रखते हुए हर कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए FSSAI स्टैंडर्ड्स बनाता है, और इन्हीं के अंतर्गत ऑयल और फैट्स के लिए FSSAI ने 64 पैरामीटर्स डिसाइड करके स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, जिसमें ऑयल की क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी पैरामीटर और सेफ्टी पैरामीटर दोनों ही शामिल हैं, और इसमें कई सारे पैरामीटर स्पेसिफाई किए गए हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आयोडीन वैल्यू, सेपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, और सेफ्टी पैरामीटर्स के लिए हैवी मेटल, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, कंटामिनेंट एक्सेट्रा। तो इन सब के सेफ्टी और क्वालिटी पैरामीटर्स निर्धारित हैं। कोई भी तेल जो बाजार में लॉन्च होता है उसको इन सभी 64 पैरामीटर्स की मानक को पार करना होता है, और इसके अलावा लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स भी FSSAI ने तेल के प्रोडक्ट्स के लिए बहुत स्पेसिफाई की हुई है कि जो भी तेल आप पैकेट में पैक कर रहे हैं उसका नाम, उस तेल का नाम स्पेसिफाई करना मैंडेटरी है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। और अगर आप ब्लेंड ऑफ वेजिटेबल ऑयल डाल रहे हैं तो भी आप उस ब्लेंड में हर तेल का नाम स्पेसिफाई करेंगे कि आपने उसमें कौन सा तेल ऐड करके ब्लेंडिंग करी है। इसके अलावा अगर आपके तेल में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट्स हैं तो आप उसको लेबल में डिक्लेयर करेंगे कि आपके कंटेंट में कितना ट्रांस फैट है, कितना सैचुरेटेड फैट है। तो इस तरह के लेबलिंग इंफॉर्मेशन से कंज्यूमर एक इन्फॉर्म चॉइस बना सकता है कि उसको इस प्रकार का तेल लेना है या नहीं लेना है।
0: जी, ये ऐसा ही प्रश्न शायद मालिक मेविका जी ने किया सीमा आसाम से। उन्होंने लिखा, फैट्स और ऑयल्स की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से क्वालिटी टेस्ट अनिवार्य हैं। तो मैं भी जरूर जानना चाहूंगी, आपने बहुत सारी डिटेल में बताया कि किस तरह से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते, पर जब हम मोनिदीपा जी कहीं पे भारत में अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रीट फूड्स का चलन बहुत आम है, छोटे

0: छोटे होटल्स हैं, आउटलेट्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स की तो हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने बताया कि उनको मैंडेटरी होता है कि लेबलिंग बताना, ये बताना। पर जिस तरह से हमारे यहाँ खान पान होता है, हर जगह ये चेक करना कि किस ऑयल में बन रहा है, अगर हम स्ट्रीट ईटिंग कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो किस तरह से कंप्लायंस की जाती है?
1: देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, होटल्स, इवन वेंडर्स के लिए जो फूड आउटलेट्स पे खाना अवेलेबल है, FSSAI सबको रेगुलेट करता है और उसके हिसाब से एक बहुत ही कट ऑफ पैरामीटर जिसको टोटल पोलर कंपाउंड TPC बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऑयल पुराना होता जाता है, उसको रीयूज करते जाते हैं, उसका टोटल पोलर कंपाउंड बढ़ता जाता है। तो कोई भी तेल जिसमें 25% से ज़्यादा TPC डेवलप हो गया है यूज़ कर करके, तो उस तेल को यूज़ करना अलाउड नहीं है रेगुलेशंस के हिसाब से। और एक फ्रेश ऑयल जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं फ्रेश ऑयल डाल रहा हूं, उसमें टोटल पोलर कंपाउंड की मात्रा 15% से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज में ये प्रैक्टिस है कि टोटल पोलर कंपाउंड जब आपके तेल की 25% से ज्यादा हो जाती है तो आप उसको फ्रेश ऑयल से टॉपिंग कर देते हैं और उसका फिर से TPC गिरा के 15 पे ले आते हैं। तो ये सब प्रोविजंस अवेलेबल हैं और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि आप इस प्रकार का कोई भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। और इन सब को कंप्लायंस को चेक करने के लिए हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स रेगुलर सर्वेलियंस कंडक्ट करते हैं, सैंपल उठते हैं, लीगल सैंपल्स उठते हैं और सर्वेलियंस करके एक्शन लिया जाता है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के अगेंस्ट जो कंप्लाई नहीं कर रहे होते।
0: जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि FSSAI ये सब कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर कोई लिसनर, जैसे मैं अपने को ही कहूँ, मैं इस तरह की कोई चीज़ अपने सामने देख रही हूँ, तो मैं कहाँ कंप्लेन करूँ, कैसे करूँ, वो थोड़ा सा बताएं।
1: जी, FSSAI के साइट में कंज्यूमर पोर्टल है, एक ऐप है फूड सेफ्टी ऐप करके, उसमें आप वेबसाइट पे जाएंगे FSSAI के साइट पे और फूड सेफ्टी ऐप करके यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और वहाँ पे आप अपनी कंप्लेन अलॉन्ग विद फोटोग्राफ्स लॉन्च कर सकते हैं। और निश्चित मानिए हर कंप्लेन की पे कार्रवाई होती है, हर कंप्लेन को एड्रेस किया जाता है।
0: जी, समय हमारे पास कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
2: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी, बताएं।
2: मेरा कहना है कि WHO की रिपोर्ट आई है कि हम लोग खाना मक्खन में बनाए और हमारा जो मक्खन है उससे LDL भी कम होता है, HDL बढ़ता है। और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो देसी घी में खाना बनाए तो बढ़िया है। तो मेरा पूछना है कि कौन से 2-3 तेल है, यानी कि मक्खन में या नारियल के तेल में या सरसों के तेल में, कृपया पक्की मोहर लगाने की कृपा करें, धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संजय बताइए गौतम साहब का प्रश्न।
3: जी देखिए, ये फिर वही घूम फिर के वही क्वेश्चन पे आ जाता है कि हम कौन सा तेल लें, सैचुरेटेड लें या अनसैचुरेटेड लें। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो उसमें आ जाता है आपका बटर, चीज़, जो घी आता है, तो ये सब सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो इसको हम ज़्यादा मात्रा में ना लें, इसका कम से कम सेवन करें। और जो लिक्विड में होते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसमें कि अभी हमने बताया कि उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो रिफाइंड होते हैं, जैसे हमने बोला कि रिफाइंड करने में काफ़ी प्रोसेसिंग होती है, उसमें गुणवत्ता भी उसी कम होती है और उसमें ट्रांस फैट की भी मात्रा बढ़ जाती है उसमें
0: जी।
3: और ज़्यादातर हम लोग जैसे कि बार बार फ्राई करने से भी ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती है, वो भी हानिकारक होता है। तो ऐसे में हम लोग जो जितने कोई भी ऑयल लें, तो हम लोग जो लिक्विड में यानी कि जो ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स लें, खास करके जो जैसे कि एम्स में एक स्टडी हुई थी कुछ साल पहले, उसमें ये बताया गया था कि 80% जो हमारा खाना है वो मस्टर्ड ऑयल में बनना चाहिए, और कच्ची घानी जो तेल होता है विदाउट रिफाइंड, और दूसरा है कि 10% ऑलिव ऑयल एंड 10% ग्राउंडनट मूंगफली का तेल। बट इसके अलावा भी आप अलग अलग मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि फ्लैक्स सीड ऑयल, चिया सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये कॉर्न ऑयल्स, कॉटन सीड ऑयल, पीनट, बहुत सारे ऑयल्स हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उसको आप रोटेशन में जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रोटेशन करते रहना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा होता है।
0: जी जी, बहुत सारी जानकारी हमें पता लगी, लेकिन जैसा बहुत मोनिदीपा जी ने बताया भी और डॉक्टर संजय ने भी बताया कि बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, लेकिन सोर्स सही होना चाहिए और सोर्स में ही हमारा सारा मामला गड़बड़ाया जाता है, क्योंकि ऑयल तो सब ठीक है पर अगर उसके सोर्सिंग सही नहीं है तो वो हेल्थ बेनिफिट नहीं देगा। चलते

0: बोलते हैं, मैं आप दोनों अपने बात क्या कहना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए लास्ट में? मोनी दीपा जी,
1: जी जब भी बाजार से तेल या फैट खरीदें तो पैकेट की लेबलिंग जरूर चेक करें। अगर पैकेट में आपको PVHO टर्म दिखता है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल शॉर्टनिंग या हाइड्रोजनेटेड ऑयल, इस तरह के टर्म्स देखें तो आप अलर्ट हो जाएं कि इसमें ट्रांस फैट डेफिनेटली है। और कई प्रोडक्ट्स को ट्रांस फैट फ्री क्लेम करने का भी उनके पास ऑप्शन रहता है। तो जिन प्रोडक्ट्स में 0.2 ग्राम से कम पर 100 ग्राम ऑफ द फूड प्रोडक्ट में ट्रांस फैट्स रहता है, वो क्लेम करते हैं ट्रांस फैट फ्री फैट। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स की तरफ जाइए जिसमें कम से कम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट्स की मात्रा कम रहे, क्योंकि इनके बहुत ही दूरगामी हैजार्डस हेल्थ इफेक्ट्स हैं। बाकी घर के खाने में आप ऑयल की मात्रा को मॉडरेशन में रखिए, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिया है, अपने टोटल ऑयल का 10% ऑयल रिडक्शन पर महीने करिए।
0: डॉक्टर संजय
2: जी, साथ साथ में आपको जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो उस पर एम्फोसिस किया

0: खाने में आप ऑयल की मात्रा को मॉडरेशन में रखिए, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिया है, अपने टोटल ऑयल का 10% ऑयल रिडक्शन पर महीने करिए। डॉक्टर संजय
1: जी, साथ साथ में आपको जो प्रधानमंत्री जी ने भी जो उस पर एम्फोसिस किया है कि हमें अपनी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, और वो हम सबसे पहले एक लाइट वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम से आपको रनिंग या बहुत जॉगिंग में एकदम से इंडल्ज नहीं होना है, धीरे धीरे उसको आप बढ़ाते रहें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नियमित, मतलब आप उसको एक शेड्यूल बना लें और अपना नियमित तौर से आप उसको करें, और फिर साथ साथ में आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन भी करना है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो साथ साथ में कैलोरी का जो आपको देखना है कि कितना कैलोरीज पर डे आप ले रहे हैं, तो कहीं क्योंकि जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपकी भूख भी ज़्यादा लगने लग जाती है एंड आपका वेट उतना ही मेंटेन रहता है अगर आप ज़्यादा खाने लग जाते हैं। तो अगर वेट लॉस करना है तो आपको खाना भी थोड़ा सा उसी के हिसाब से, और कार्बोहाइड्रेट्स का भी ध्यान रखें, सिर्फ फैट का ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स से भी फैट बढ़ता है बॉडी में। अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा ले रहे हैं तो वो भी फैट में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है हमारे सभी श्रोताओं को धन्यवाद देंगे। आज हमने काफ़ी इन डेप्थ कोशिश की कि एक्सेस ऑयल इनटेक का क्या हेल्थ रिस्क होता है, तेल के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर क्या नुकसान होता है, उस पर हम आप तक महत्वपूर्ण बातें अपने जो हमारे विशेषज्ञ उनके माध्यम से पहुँचा सकें। आप सभी को धन्यवाद। सीमा,
3: सबको धन्यवाद देते हैं और अपने श्रोताओं को भी धन्यवाद देते हैं। और हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मोना दीपा तालुकदार जी थी, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड इमरजेंसी मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं का भी शुक्रिया। और शालिनी जी थी हमारे साथ प्रोग्राम की प्रोड्यूसर,
2: तो
3: और शालिनी जी आपका भी शुक्रिया।
2: सीमा, तुम्हारा भी धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ सुचालन करने के लिए, और सभी श्रोताओं को धन्यवाद देते हुए हम अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत दीजिए शालिनी मित्तल को, और स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
3: नमस्कार,
2: नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार,
1: धन्यवाद।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक ये है भारत के सोल्जर्स इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में अब एक नए समय पर हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए
4: तो पार्टी शुरू हुई है
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
2: म्यूजिक मस्ती
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी

धर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: हाँ जी, हाँ जी,
1: चलो धन्यवाद जी फोन करने दे लई।
0: ओके मैम, थैंक यू।
1: ओके जी ओके। सो असीं तुहाडे भी किस्से कहानियां सुनने नूं बिल्कुल तैयार बैठे हाँ। तो तुसीं की करना है ये भी तुहानूं दस देनी है। तुसीं नंबर डायल करना है 0181 2345 174 0181 2342174।

0: क्योंकि पानी बहुत घट पाया जाता पौदे नू, थोड़ा यार पाया करो, वो भी खुश हो जाएंगे, तुसी भी खुश हो जाओगे,
1: जी
0: मैंने तो
1: थोड़ा
0: बहुत मजा
1: पोल्यूशन
0: आता।
1: भी घटाओ।
0: हाँ वो भी बहुत जरूरी है।
1: ये साड़ी सब दी जिम्मेदारी है, सिर्फ थोड़े ते नहीं पा रहे। मैं और प्रीति भी इस चीज़ की जिम्मेदारी पूरी पूरी लेने कि पोल्यूशन घटाना साड़ी सब दी जिम्मेदारी है।
0: चलो क्रेटीना हो गया, आपां जरूर कटावांगे, वो बाद दी गल है। हुण चलो हुण नवी गल करदे आं, गांदा पंजाब शुरू करदे आं।
1: जी बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड। तो दोस्तों तुसी भी सानू फटाफट मैसेज करने शुरू करो, स्टूडियो दे विच कॉल करनी शुरू करो। साडे स्टूडियो दा नंबर है 0181 8342174,
0: 0181-234-274।
1: ते इस नाल ही दोस्तों तुहाडे गाने दी फरमाइश दा वेट करते करते मैं ते प्रीति अपने गाने दी फरमाइश तुहाडे लई प्ले कर रहे हैं।
0: ते कटीना मैनूं दसो कि कहिड़ी फरमाइश लैके आए हो तुसी।
1: मैं तो सुनना चाहती हाँ हर बार इतना अकिल दी आवाज़ दे विच खाब।
0: लो जी पूरी करदे आं असीं पहली फरमाइश कटीना दी।
1: ते उस दे नाल तुहाडी भी फरमाइश, असीं वेट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी फोन उठाओ, नंबर डायल करो।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036।

0: ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मेरा एक जिद्दी गुआंढी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगा लेने, पर ओ मन्नन नूं तैयार ही नहीं सी कि सचमुच बिल जीरो आ सकदा है। मैं क्या पुत्तर, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सब दा बिजली बिल जीरो आन लगा, फिर बोलिया हुण लगा ही दिना हां। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़न लई रजिस्टर करो PMsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दो।

ने, सारे वादे टूट गए ने, इक सादा रुकना बाकी है। जिदे विच तेरी याद पई, दिल कढ के सुटना बाकी है। जिदे विच तेरी याद पई, दिल

जी हाँ दोस्तों, शाम दे या रात दे 8:33 हो चुके हैं। FM रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी स्पोर्टी संडे। जी हाँ दोस्तों, ओ वाला संडे जिस दिन असी सारिया हफ्ते दियां जिहड़ियां स्पोर्ट्स दियां खबरां ने, स्पोर्ट्स दियां गतिविधियां ने, ओहदे बारे असी गल करते हैं। सो प्रोग्राम च एक बार फिर तुहाडा स्वागत है जी। प्रोग्राम तुसीं इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल। एंड सब तो पहला असी गल करते हैं भाई इंडिया ते अफगानिस्तान विचकार चल रहा टेस्ट मैच जो कि कल शुरू हुंदा है। एंड आज दे दिन तक 564 स्कोर जिहड़े ने इंडिया बना लैंदा विद 8 विकेट लॉस। एंड अपनी पहली पारी बड़ी छेती डिक्लेयर भी कर दिंदा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर जिहड़े ने उन्होंने कर लेने। सो ज़्यादा समा ना लगाते हुए इंडियन टीम दे कप्तान शुभमन गिल ने बड़ी छेती डिसीजन ले लिया कि नहीं 564 भी काफ़ी ने, लेट्स सी अफगानिस्तान किन्ना स्कोर करता है। बट लेट मी टेल यू कि किन्ना स्कोर इंडियन बैट्समैन ने किया। यशस्वी जायसवाल ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाए, 24 स्कोर। KL राहुल तीसरी बार लगातार सेंचुरी मारन तो नैक्सट गेम तो बाद उस तो बाद आउट हो गए। जी हाँ, KL राहुल पहले ऐसे क्रिकेटर बन चुके ने, बल्लेबाज बन चुके ने कि जदों उन्हां दी सेंचुरी कंप्लीट हुई उस तो बाद नाल ही वो आउट हो जाते हैं। तो उस तो बाद

साई सुदर्शन 81 स्कोर, शुभमन गिल कप्तानी पारी खेलते हुए 126 स्कोर, ऋषभ पंत अपनी तूफानी पारी दे नाल 81 स्कोर, एंड ध्रुव जरेल 19, वॉशिंगटन सुंदर 52, एंड मधु सुधार जिहड़े कि नवें ऐड होए ने इंडियन क्रिकेट दे विच 28 स्कोर, एंड मोहम्मद सिराज 22, एंड कुलदीप यादव नॉट आउट, एंड वॉशिंगटन सुंदर भी नॉट आउट। सो यह स्कोर रहा इंडिया का। एंड अफगानिस्तान ने अज अधे दिन 113 स्कोर ही मारे एंड 5 विकटा भी गवा लिया। सो यह है स्कोर जो कि अज चलिया। सो होर भी गल्लां करांगे स्पोर्ट्स संडे दे विच। फिलहाल वधदे आं पहले गीत वाल।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों। जिंदगी जिंदाबाद। रात के पूरे 9:03 ते 27:28 सैकेंड हो चुके हैं। एफ एम रेनबो ते शुरू हो चुका है प्रोग्राम दिल चाहता है, एंड इस प्रोग्राम दे विच तुसी भी शामिल हो सकते हो। सानू साढ़े वट्सअप ते तुसी मैसेज भेजना है 9855101027 ते किसी भी हिंदी या पंजाबी फिल्म का गीत जेकर तुसी सुनना चाहते हो तो तुसी सानू उस फिल्म का नाम लेके गीत का नाम लेके सानू भेज सकते हो। सो, अगर तुहाडा मन भी है गीतां नूं सुनण दा फटाफट देरी ना लगाओ। बहुत सारे दोस्त मैसेज ऑलरेडी कर चुके ने, तुसीं भी हिस्सेदारी जरूर पाओ। सब तो पहले मैसेज आंदा है जी सानू रजाक मुहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान दा हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो लिखा है, प्यार भरा नमस्कार, फिल्म इंतकाम हम तुम्हारे लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, लाडी धालीवाल, जलंधर मास्टर मोहन लाल शौंकी, अरविंद कुमार, सुरिंदर कुमार का सुरिंदर कौर का गीत, एक मेरी अख काशनी, सिर्फ फिल्मों के गीत लगनगे जनाब। अगला मैसेज फिल्म हमारे तुम्हारे गीत, अच्छा चलो जी बाबा माफ़ कर दो। और ये मैसेज भेजा है हमें कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश युद्धव कड़वासरा। तो अगे वे अगे अपा को मैसेज आया पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, मूवी साजन और ट्रैक है रेशम की डोरी। ठीक है जी, अगला मैसेज आया साढ़े को एक होर प्रेमपूर्वक नमस्कार, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली कुमार, सरवद कुमार, सानवी कुमारी, कल्पना देशमुख, समस्त राजे यादव देशमुख और वायाल परिवार, आप सभी को नमस्कार जी। फिल्म

50-50 गायक अमित कुमार और आशा भोसले, बोल्स सुड माजा हाथ मला पीने दे। ओके अगला मैसेज, सत श्रीकाल वाहेगुरु तुहानू राजी रखे, गर्मी तो सब बचे रहो जी। चंडीगढ़ सतीश नेजा, बिमला नेजा, शिफाली, शैफी, मास्टर डेविस, गीत कली कली चूमे, आवाज़ लता मंगेशकर, फिल्म मनचली, धन्यवाद। ओके जी धन्यवाद। अगला मैसेज, सब प्रेम नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, सत श्रीकाल। गीत नी मैं यार मनाना नी, चाहे लोग बोलियां बोले, फिल्म दाग, और फिल्म जो है वो आई है 1973 में। ओके और नी मैं यार मनाना नी, उसको गाया है लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम जी ने, और उसकी फरमाइश भेजी है हमें गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। ठीक है जी, आपकी फरमाइश और सभी दोस्तों की फरमाइश पर ये गीत अभी सुनने जा रहे हैं आप अपने अपने रेडियो सेट पे, और आप भी हमें मैसेज भेज सकते हैं 9855101027 पर।

हमारी पसंद पूरी करना जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म दीवाना गीत के बोल, तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं हे सनम। ओके जी, और से आवाज दी है कुमार शानू ने, साधना और सरगम ने। Now the point is, I am looking after this song, but I am not able to find out. भाई ऐसा है, दीवानी फिल्म के बहुत, दीवाना नाम के बड़े बड़े फिल्में, बड़ी सारी नाम है इसके नाम के। चलो फिर भी मैं और भी ट्राई करता हूँ, तेरी उम्मीद। ओके सो या इसकी फरमाइश भेजी है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। अगला मैसेज गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। अगला मैसेज गोविंदपुर सीकर राजस्थान से, दहतार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, फिल्म जान, गीत के बोल, यूं जिए मरेंगे यार की दुनिया। ओके, अगला मैसेज फिल्म फांसी, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुलक्षणा पंडे जी, गीत के बोल, जब आती होगी याद मेरी दिल तो धड़कता होगा। कस्बा बराड़ जिला अम्बाला हरियाणा से, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह, राहुल। रेडियो के 90 वर्ष होने पर पूरी आकाशवाणी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे ये 90 वर्ष जो हैं आप सभी के प्रेम के बिना अधूरे हैं। आप सभी का भी तहे दिल से आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय कीजिए एक एक सेकंड एफएम रेनबो के साथ, आकाशवाणी के साथ। आइए अब एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत गीत को जिसकी फरमाइश हमारे दोस्तों ने भेजी है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जिसे खूबसूरत आवाज़ दी है साधना सरगम जी ने और कुमार शानू जी ने।

0: से प्यार कर।
1: जी हाँ दोस्तों, इस गीत में सिर्फ तुम का मतलब है सिर्फ आकाशवाणी। जी हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए। अगला मैसेज है जी अब पॉल ते पूरा पॉल परिवार सरावण नगर जलंधर तो पंजाबी फिल्म यारी जट जी का गीत गुड़ नालो इश्क मिठा। ठीक है जी, या वी जट दी गुड़ नालो इश्क मिठा। ओए होए, ओके, थैंक यू सो मच पॉल ते पूरा पॉल परिवार। अगला मैसेज, नमस्कार जी, फिल्म अरपन गीत मोहब्बत अब तिजारक बन। मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, कांशा मलिक और माही मलिक। अगला मैसेज, आदरणीय पसारक जी सप्रेम नमस्कार, बेशुमार मोहब्बतें प्रोग्राम दिल जाता है, फिल्म सीता और गीता गीत हवा के साथ साथ, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, अनारकली बजाओ जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावे मल्होत्रा, पाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, दुआओं में याद रखना जी। बिल्कुल, अगला मैसेज आया जी, प्रोग्राम दिल चाहता है प्रसारिक रूबल जी को प्यार भरी नमस्कार, मोमिला स्टोरी गीत याद आ रही है, याद आ रही है, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता एनी सॉन्ग में भी शामिल कर सकते हैं। अरे वाह वाह वाह, ओके जी। अगला मैसेज आया हमारे पास, दिल चाहता है पिंड मूलियां वाली जिला फाजिल का, विनोद काठपाल, प्रवीण काठपाल, हनी दीक्षा, जन्नत गुरलीन काठपाल, फिल्म हम दो हमारे दोदा कोई भी गीत सुना दो। अगले मसीह, नमस्कार जी, नवी दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म सुदागर और गीत इल्लू इल्लू क्या है। फिलहाल असी पहला सुना गए फिल्म यार जट दीता पंजाबी गीत, क्योंकि साढ़े को पंजाबी फरमाइशा थोड़ी घट आदि है तो उन्होंने ज़्यादा असी प्रेफरेंस देने, बट या एक होर गाना जो मैं प्ले करांगा, ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਹਵਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। अगला मैसेज आपको हार्दिक नमस्कार। फिल्म मस्ताना गीत छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल ईशान छिंपा, पूजा परिहार, मैसेज ज़रूर शामिल करें। ज़रूर जी। अगला मैसेज फिल्म नागिन गाना तेरे इश्क का हुआ ये असर, गांव नंगेल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मनीष शर्मा, राहुल शर्मा। फिल्म आज और कल सॉन्ग या वादियाँ या फिजाएँ, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगा वाला चौंक, कुराया जलंधर तो। अगला मैसेज है पिंड ते डाकना निमणाबाद पिंड सफीदो मंडी जिंद हरियाणा तो जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर किसी भी गीत विच शामिल करो जी, धन्यवाद। अगला मैसेज कनेरा महला पटियाला तो बत्ता परिवार, मुकेश, नीलम, नितिन, पल, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। ठीक है जी। अगला मैसेज सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनदीप सिंह पिंड छांजली जिला संगरूर तो लिखे एनी सोंग। जी दोस्त एनी सोंग कह ही रहे हैं तो सीता दे गीता दी शायद दो बार फरमाइश आ चुकी है तो बड़ा ही खूबसूरत गीत है जिसनों गाया है किशोरदा आशा जी ने। आओ इंजॉय करते हैं इस प्यारे जी गीत नूं।

जी इस खूबसूरत गीत तो बाद एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है दे विच। ते देखते हैं अगले दोस्त कौन ने ते की दिल चाहता इन्हों का। सब प्रेम नमस्कार रिस्पेक्टेड होस्ट जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो रोजी पर्ल एंड विलिस डिकैस्ट्रो सन फरमाइश भेज रहे ने। थैंक यू सो मच। अगे एक होर मैसेज आया लिखा है जी दिन महीने साल गुजरते जाएंगे दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। अच्छा ये गाने का नाम है। फिल्म अवतार संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार नंद बख्शी गायक किशोरदास।

लता मंगेशकर, जनाब आपने अपना नाम कहाँ लिखा है रे, हम ढूंढे नहीं पा रहे। तो का नाम कहाँ है रे बाबू, मैसे बैजा हो, नाम नहीं चाहिए का तो का। अगला मैसेज आया, फिल्म नया दौर, बोल उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, कृतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। अगला मैसेज, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से, स्वरण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, नूर सिंह, गुलाल सिंह, अविराज सिंह, शुभदीप सिंह, फिल्म दो रास्ते, गीत के बोल, बिंदिया चमकेगी, जी हाँ चमकेगी चमकेगी, बिंदिया पर लगी है एलईडी लाइट, जी हाँ, आदरणीय प्रसारक महोदय जी, प्यार भरा नमस्कार, फिल्म चिंगली और बोल, नैन तुम्हारे मजेदार, जनाबे आली, नरेश्वर नगर, नरवेल, महाराष्ट्र से पीएस नवाहकर, निर्मला, विशाल, सोपान, ताइवाड़ नहीं ताइंडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर, शुक्रिया सभी को। अगला मैसेज, सुप्रिय नमस्कार, फिल्म कृष बोल, देखो पवन भी लहरा रही, देखो पवन भी लहरा रही है, जरा जरा। यार ये गाना जरूर लगाएंगे क्योंकि ऐसे गानों की फरमाइश जो है वो बड़ी कम होती है, और जो कम होती है हम वो ज़रूर लगाते हैं, बस वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसकी मिल गया देखो पवन ही, अरे नहीं मिला है। कृष्ण मूवी के गाने लग गए ने पर ओके चलो, ये फरमाइश में भेजी है धतरेंगी भाटापारा से, छत्तीसगढ़ से, और लिख रहे हैं हीरा मणि वर्मा, पारसवनी वर्मा, और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जनाब। ऐसा है कि मुझे आपकी फरमाइश अच्छी लगी है ना कृष मूवी की, पर फिलहाल अगर मुझे ये गाना नहीं मिल रहा तो हम ढूंढेंगे, मतलब इसी मूवी का कोई और गाना चलाएंगे, पर हम लगाएंगे ये गाना ज़रूर लगाएंगे, या कोई और गाना ज़रूर लगाएंगे। जी हाँ, ये गाना लगा दिया है हमने कृषि मूवी का, प्यार की कहानी, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

जी दोस्त कहेंगे कि वाकई ये तो सुनना नहीं था, वो भी सुनने लगे। हाँ, आपके वाला गाना नहीं मिला तो उसी मूवी का कोई चला दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये हमारे पास आया है मैसेज, फिल्म मेरे हमसफर, गुरिया प्यार मुझे कब देगी, गुरिया प्यार मुझे कब देगी, गीतकार इंदिवीर और ये वो ये वो। और फैसी फरमाइश भेजी है जाकिर मुलानी, समिया मुलानी, सुहार मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दुशान मुलानी, नसीर मुलानी, चचा चाची और पूरा मुलानी परिवार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। और आगे हमें फरमाइश भेजी है सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मुन्नी, काका, बिट्टू, लाडी, मोहन, उस बाद मोन मास्टर जनरल जलंधर तो लिखा फरम फिल्म धर्मवीर गीत ओ मेरी महबूबा। भैया भी गीत बहुत चिर बाद होया तो पहला ही गाना लगा देने हैं, क्योंकि फरमाइश आपा को बहुत आ गईया ने, कवर भी कर लिया ने, सो आपा शायद गाना प्ले कर ही सकते हैं। ते नहीं, धर्मवीर स्पेलिंग ही है धर्मवीर दी, ओ मेरी महबूबा। जी हाँ, फरमाइश तुसी वेख दोस्तों भेजना चाहते हो 9855101027 ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 9855101027।

0: तेरी मर्जी मेरा क्या। जी हाँ दोस्तों, एंजॉय कर रहे प्रोग्राम दिल चाहता है एंड अगले दोस्त दिल की चाहता है और सुन दिया। नमस्कार वरिन केड़ा पंजाब तो मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती रोड़ा कहते कोई भी गीत ला लो, कोई भी गीत ला लो भाई। मेरठ कैंटो दिग्दर्शन और कविता गोड फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ वीर जारा वीर नो एंट्री मर्डर तेरे नाम भाई कोई ला दे शाहरुख खान साहब तो फिर यू नो फिर है ये साडे प्यारे मैं यहां हूं
1: जानम देख लो।
0: ओके जी, मैं तो गाने शुरू कर देना, कोई ना जल्दी लगाने गाना।

अगली फरमाइश चाहिए आपको प्रेम पूर्वक आदाब गाम कुहार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सर नाजिया आफिया इब्राहिम सदाम अदाम और एनी सॉन्ग डे जी हाँ एनी सॉन्ग लगा दीजिए। नमस्कार जी, मैं बिंदु रजिंदर जोड़ा सतीश बिरयानी। अरे बिरयानी नहीं होगा, नाम गलत लिख दिया है, अगले के मुंह में पानी आ जाएगा अपना नाम सुनते ही। सोनू लहार बस्ती शेख जलंधर से मुझे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुनना है, फिल्म है पगला कहीं का। ये मुझे तो नहीं कह रहे तुम तो मुझे ये बुलाना पाओगे, सुना दीजिए। अरे फिल्म का नाम भी लिख भेज दीजिए, उस फिल्म का नाम यही है पगला कहीं का। ओके ठीक है, मैं फिलहाल वीर जरा मूवी का गाना सुनने लगा। वीर जरा तो बहुत थोड़ी को जरा जरा जरूर नामा वीर जी, थोड़ा ये मेरा इंतजार करो।

जी हाँ, कोई भी कभी भुला नहीं पाएगा मुझे। जी हाँ, अगर गलती से कभी मैं इधर उधर हो जाऊंगा तो याद रखिएगा वो भारी भरकम सी आवाज में रात के प्रोग्राम में सभी को हंसाने वाला, कहाँ चला गया वो कमबख्त, याद आता है सभी को। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज हमें आया है हृदय से आभार, जी हाँ दोस्त का नाम लिया तो उन्होंने हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज है फिल्म सौदागर से, बोल सजना है मुझे सजना के लिए, राम सिंहपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, अशोक बब्बर, पवन राजेश, अजय राहुल, मनु बब्बर। ठीक है, आगे मैसेज आया है खुशनुमा पेशकश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैसेज पढ़कर मैं और खुशनुमा हो जाता हूँ और प्यारे दोस्तों के साथ और प्यारी प्यारी बातें करने की कोशिशें करता रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कभी मुकम्मल हो पाऊँगा इस जन्म में या नहीं। अगला मैसेज व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेशकर्ता को साधन नमस्कार, आकाशवाणी के 90 वर्ष ऐतिहासिक गौरविंदित वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कल 8 जून को हम आकाशवाणी के 90 साल स्थापना दिवस मना रहे हैं, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं संपूर्ण आकाशवाणी परिवार को। सादुल शहर से राजस्थान से राम कुमार रिवार्ड, चंद्रकला रिवार्ड, जिंदगी प्यार का गीत है, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे मैसेज आया है हमें आदरणीय प्रसारक जी, आदाब नमस्कार, लाजवाब कार्यक्रम, लाजवाब प्रस्तुति, और लिखा है हमें किसी भी गीत में शामिल करें, धनोरी तेलीवाला से निसार सलमानी, निसार सलमानी के बाद नौशाद और बेबी आलिया और आयान और बाबू, दिल

0: की गहराइयों से शुक्रिया। लिखा है कि आदरणीय कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता महोदय जी, सादर नमस्कार, और आपका कार्यक्रम नियमित सुनते हैं आप सभी को। कभी कभी तो अपनी पसंद का गीत जरूर सुनाना कार्यक्रम दिल चाहता है। फिल्म निकाह गीत बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। आवाज़ महेंद्र कपूर साहब, पसंदकर्ता रेडियो श्रोता कृष्ण कुमार ढाबी, भूपत कुमार ढाबी, राधा तंवर, सिंधरी, जिला बलोतरा, राजस्थान से। सर, हम भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, कभी हमारा तो मैसेज पढ़ते भी नहीं आप। कभी भी मुझसे कोई ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मैं मैसेज नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं सभी का मैसेज पढ़ के घर जाता हूँ। हमारी मम्मी कहती है किसी को नाराज नहीं छोड़ने देना है, सभी का मैसेज पढ़ने हैं, पढ़ के जाते हैं घर। हम 11 बजे के बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी खुद ही मैसेज पढ़ लेते हैं, ठीक है? सो डू नॉट वरी। हंस दिया साहब, ठीक है। सो बीते हुए लम्हों की ये सौगात महेंद्र कपूर की आवाज में आप सभी के रेडियो सेट्स पर।
1: भी अलविदा मत कह।

रिस्पेक्टेड होस्ट भाई, थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम विद लवली सॉन्ग्स. ओके थैंक यू. गाने के बोल मैं तेरे प्यार में पागल, प्रेम बंधन आवाज़ किशोर कुमार मिर्ज़ापुर, और कुरुक्षेत्र से हिसार धीमान श्रीमान राहुल धीमान. अब ऐसा है कि फरमाइश किसी की भी प्ले नहीं होगी. आपने बड़े तुरंत लास्ट के समय में मैसेज भेजा है, गाना हम ढूंढ चुके हैं वो प्ले होगा, पर नाम सभी का ले लिया जाएगा क्योंकि आप बहुत लेट हो, इतने लेट हो कि मैं सिर्फ नाम ले पाऊंगा बाप का. और मैसेज भेजा है मिर्ज़ापुर से कुरुक्षेत्र से हिसार धीमान और श्रीमान राहुल धीमान, सुमन धीमान, प्रियंका धीमान, आंचल कुंज पर परवीन धीमान, चिराग रज धीमान, राजेश धीमान. अगला मैसेज पेंड हीरावली जिला फाजिलका दे पक्के सरोता सुभाष गुदारा, पिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा. सत श्रीकाल जी, प्रोग्राम दिल चाहता लाइव सुन रहे हैं, रात में सारे काम नुटा के इस प्रोग्राम नाल जुड़ जाने हैं, कोई भी गीत सुना दो, धन्यवाद जी. अगला मैसेज आया जी श्रोता रघुवीर नगर से, आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें, दिलावर खान हसीना, बानो, एलिजा, नायाब और लड्डू. ठीक है, थैंक यू सो मच. अगला मैसेज आया है हमें फिल्म फकीरा

जी हाँ दोस्तों, एंजॉय करसी प्रोग्राम दिल चाहता है। और एक दोस्त का मैसेज आया, लिखा है हमारा नाम नहीं बोला भाई। अरे कैसे नहीं बोला, जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो का नाम हमने बोला है 9:20-25 के पास, आपने नहीं सुना होगा। खैर एक और लास्ट में मैसेज है, वो भी नाम ले लेते हैं, नोहर राजस्थान से, नरेंद्र सुथार, मनो सुधार। सो इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करने की आप सभी से मैं परमिशन लूँगा, इजाज़त लूँगा। और आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ठीक रात के 10 बजे आप इंजॉय करेंगे अगला प्रोग्राम शामी गज़ल मेरे साथ। सो स्टे ट्यून्ड FM रेनबो।

स्थापित रूबल। मुझको काफी है बस एक तेरा मुआफिक होना, मुझको काफी है बस तेरा एक मुआफिक होना, सारी दुनिया भी मुखालिफ हो तो क्या होता है।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रात दे पूरे 10 बज चुके ने ते आकाशवाणी ते इस वेले समा हो चुका है शामे गजल दा। महफिल पूरी सज चुकी है ते इस महफिल दे विच मैं तुहाडा इस्तकबाल करदा, मैं तुहाडा दोस्त।

उसको देखा तो देखा कुछ भी नहीं, उसको देखा तो देखा कुछ भी नहीं, लुट गया सब कुछ, बचा कुछ भी नहीं। सोचकर नारा लगाया इश्क ने, सोचकर नारा लगाया इश्क ने, वो मिला है तो गया कुछ भी नहीं। इश्क जिंदा यार जिंदाबाद है, इश्क जिंदा यार जिंदाबाद है, इससे आगे का पता कुछ भी नहीं। सच बताऊं दर्द भी सौगात है, सच बताऊं दर्द भी सौगात है, वरना आहों को मिला कुछ भी नहीं। हमको पागल कह रहा है ये जहां, हमको पागल कह रहा है ये जहां, इसको लगता है हुआ कुछ भी नहीं। कि अपनी महफिल में अकेला था वही, अपनी महफिल में अकेला था वही, सारी महफिल में दिखा कुछ भी नहीं। इश्क की इतनी हकीकत है जिया, इश्क की इतनी हकीकत है जिया, उसकी मर्जी के सिवा कुछ भी नहीं। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਜ਼ੀਆ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮੇ ਗਜ਼ਲ, ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ FM ਰੇਨਬੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ।

कतरे को तुम दरिया कर दो, कतरे को तुम दरिया कर दो, मुझको अपने जैसा कर दो, दिल में अपना प्यार जगाकर काश मोहब्बत वाला कर दो, मुझको अपना कहकर सबसे मेरे पीछे दुनिया कर दो, ऐसी आंधी प्यार की भेजो, ऐसी आंधी प्यार की भेजो, दिल का गुलशन सहरा कर दो, कि तेरे सिवा मैं कुछ भी ना देखूं, आंख पे ऐसा पर्दा कर दो, कि धड़कने आहें सब हैं सुनी, धड़कने आहें सब हैं सुनी, सांसों को भी तन्हा कर दो। प्यारे दोस्त, एंजॉय कर रहे प्रोग्राम शामे गजल FM रेनबो पे।

हो तुम आँखों में छुपा लूँगा, जब चाहूँ तुम्हें देखूँ आईना बना लूँगा। प्यारे दोस्त, इन्जॉय कर उसी प्रोग्राम श्यामी गज़ल। फिलहाल रात के 10:26:26 हो चुके हैं और हम इन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम की आखिरी गज़ल जसमीत कौर होना की आवाज़ के।

खूबसूरत गीत तुसी सुन रहे सी अभी तो हाथ में बाय मन्ना डे। इंजॉय करे प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। अगे सुनते हैं अगला गीत, खूबसूरत आवाज़ सुमन कल्याणपुर जी दी, ते मेरा नाम मोहित रूपल।

जी, अगर आप भी खफा हैं तो ठीक है, थोड़ी देर खफा रहने में भी कोई हर्ज नहीं है, बट बस शर्त है कि उसके बाद आपको मान जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खफा हैं तो आपको मान भी जाना चाहिए। अगर दिन है तो रात है, अगर

सुबह है तो शाम है तो ठीक है भाई, कफा है तो मान भी जाइए, ये भी तो रूठने और मनाने का हिस्सा है। सो चलिए प्रोग्राम के उस अंतिम गाने की ओर बढ़ते हैं, जिसके बाद आज का जो कार्यक्रम है वह हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि रात के बज चुके हैं 10:56।